Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में, ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: जी हाँ, हम दोनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं आपके साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से खबरें कहानियां शेयर करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। और वक्त बिताने के सिलसिले को शुरू करने का वक्त आ चुका है।
1: बिल्कुल वक्त आ चुका है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये इंसान सुबह सुबह इतनी एनर्जी में कैसे आता है,
0: मैं पता नहीं।
1: मैं भी एनर्जी में आती हूँ, लेकिन मुझे जो है एकदम थोड़ा ऐसे उठने में ना टाइम लगता है।
0: हाँ।
1: यार एक दो बार हम बातें कर लेंगे, एक दो गाने में सुन लूंगी, उसके बाद फिर आप देखो, फिर तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चाबी भर दिया मुझमें, इतनी एनर्जी आ जाती है मुझमें। लेकिन आते ही कैसे, क्या
0: देखिए, ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, पुराना नुस्खा है, बहुत सीक्रेट है, आप किसी को बताना मत तो मैं बताऊंगा
1: रेडियो में बोल के।
0: नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी किसी को बताना मत तो मैं बताऊंगा।
1: बताइए।
0: बहुत सिंपल सी बात है, ये है कि सुबह उठने के बाद ना मैं ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता।
1: मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखती।
0: और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सुबह सुबह मतलब रात को सोने से पहले पानी में थोड़ा बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर डाल देता हूँ, सुबह उठ के उसे खा लेता हूँ, ताकत आ जाती है।
1: और आप रात को जल्दी भी सोते होंगे ना?
0: हाँ, अभी कुछ दिनों से मैं 10 बजे सो रहा हूँ।
1: 10 बजे सो जाते हैं?
0: हाँ, 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 6 घंटे की नींद ही होती है। बट इससे पहले
1: मेरा 10 बजे तो मैं खाना खा रही होती।
0: नहीं, मैं 10 बजे खाना नहीं खाता
1: कभी भी, मैं 11:30 से पहले सो ही नहीं सकती।
0: नहीं, मैं 10 बजे खाना नहीं खाता। मैंने 10 बजे खाना खाने का जो वो था मेरा, वो सारा छोड़ दिया मैंने। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि 6:30 से 7:30 के बीच में खा लूं।
1: मुझे फिर भूख लग जाती है उस वक्त खाते तो।
0: मुझे भी लगती है बट मैं नहीं खाता, मैं पानी पी के पेट भर लेता हूँ। बढ़िया। यहाँ पे हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए थे, बहुत सारी और बातें भी करनी है। ये मेरे घर के नुस्खों के बारे में बात चल रही। बट आप अपने मैसेजेस भेजिए 3311063 पर, हमें मैसेज भेज के बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है, आज क्या क्या करने का इरादा है। देखिए, वेंसडे है, कल थर्सडे है, फिर क्या है, वीकेंड है।
1: यस गाइस, बस इसी मोटिवेशन में मैं चलती हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: मैं संडे को भी यही सोच रही होती हूँ कि यार बस आने ही वाला है। देखो,
0: जैसे ही वीकेंड के बारे में लोग सुनते हैं उनका मन भी करता है। म्यूजिक मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, इसका क्यों कट नहीं गया था उन्होंने। बट फिलहाल यहाँ पे और भी गाने जो हम आपके लिए प्ले करेंगे, स्पेशल वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे। देखो, बस इस गाने में शाम हटा के वीकेंड रख दो, लोग खुश हो जाएंगे। लोग उसे एक मोड में पहुंचेंगे, बस अब तो चाहिए वीकेंड, चाहिए।

0: तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप अपने मैसेजेस भेज दीजिए 3311063 पर, बताइए हमें आपके दिन के बारे में, क्या क्या करने का इरादा है। गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजिए, कोड्स भेजिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। मोटे तो मतलब मोटा तो मैं हूँ ही और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी ओबिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 6:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमें मैसेजेस आए हैं। मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल nice. पानी पीते रहेंगे और अभी इत्तेफाक की बात है कि स्टूडियो में आने से पहले पानी ही पिया था।
1: यस yes, हम दोनों ने ही पानी पिया था।
0: यस थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। रशीन का मैसेज आया है, स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट, गुड मॉर्निंग जियो बिंदास। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैंने भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ ही शुरू किया था कि चलो
1: मेरे नाम के साथ
0: नहीं, वेडनेसडे और निकलना थर्सडे आ जाएगा जल्दी करके।
1: ये वाला तो पॉजिटिव है देखो
0: जी, बिल्कुल। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, उन्होंने एक फोटो भेजा है और उस फोटो में एक मिनट, मुझसे गलत मैसेज क्लिक हो गया था। एक फोटो आया है और फोटो में लिखा है गुड मॉर्निंग, व्हेन यू डू समथिंग ब्यूटीफुल एंड नोबडी नोटिस्ड, डू नॉट बी सैड फॉर द सन, एवरी मॉर्निंग इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल एंड येट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस स्टिल स्लीप्स। बिल्कुल सही बात है यार, मैं सच बताता हूँ, मुझे ना एक चीज जो आजकल के जमाने में एक हद तक सही भी है, एक हद तक मुझे पर्सनली थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है, वो ये है कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ करके, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब यू हैव टू सेल योर सेल्फ। और दुनिया इतना ज्यादा पीआर ओरिएंटेड हो चुकी है कि तुम जब तक अपने आप को बताते नहीं, दिखाते नहीं हो कि देखो मैं ना ये सब कर चुका हूँ, ये सब कर चुका हूँ, ये सब करता हूँ, ये सब मैंने किया है,
1: आपको अंडरएस्टिमेट
0: किया जाता है। वो एक रिस्पेक्ट जो बहुत बेसिक तरीके से लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो रेस्पेक्ट जो है वैल्यू बेस्ड हो गई है, या फिर एक बंदा क्या कर सकता है उसके हिसाब से हो चुकी है। ह्यूमन टू ह्यूमन म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो है वो आजकल उतनी नहीं दिखाई देती मुझे। बट एनीवे, ये बिल्कुल सही बात कही है, हम जो अच्छा कर सकते हैं वो हम करें, लोग देखे ना देखे वो अलग बात है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, अभी नहीं मिलेगा मगर कल परसों 10 दिन बाद 20 दिन बाद 1 साल बाद 10 साल बाद कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, बट वो मिलता जरूर है। और ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, नेहा जी का मैसेज आया है। नेहा जी ने लिखा है बिछड़ने वाले तेरे लिए एक मशवरा है, कभी हमारा ख्याल आए तो अपना ख्याल रखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुप्रभात करके मैसेज किया उन्होंने, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। संधू जी का मैसेज आया है, संधू जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड डे, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। और शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने एक और मैसेज भेजा है, लिखा है कि गॉड हैज अ प्लान, ट्रस्ट इट, लिव इट एंड एंजॉय इट करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ नाजनी जी का मैसेज भी पढ़ते हैं, लिखा है कि गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल एनर्जेटिक स्टार्ट टू द डे, मे टुडे ब्रिंग यू जॉय, इंस्पिरेशन एंड सक्सेस इन एवरीथिंग यू डू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आप सभी को काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। उसके साथ साथ बता दूं कि थोड़ी ही देर में हम वापस आएंगे एक सवाल पूछने के लिए, जानने के लिए कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने तेज है, क्योंकि कशिश को कल हमने जवाब बता दिया।
1: यस, ओह एक्सक्यूज मी, सवाल मैंने बताया था।
0: हाँ, तो जवाब ही पता ही होगा। तो ये बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जियो बिंदास।
2: कूल सॉन्ग। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
4: Cool song. Dum, bichak, dum.

0: इतना क्यूटनेस है इस गाने में, इतना क्यूटनेस है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मजा आ जाता है गाना सुन के, ऐसा लगता है कि मैं भी प्यार में हूं, मैं हूं प्यार में। वैसे अब पूरी जनता सोच रही होगी किससे, आपको क्या लगता है?
1: कोई नहीं सोच रहा मेरे सिवा।
0: मैं बता रहा हूँ, खाने से, सिर्फ और सिर्फ खाने से।
1: या फिर तो मुझे भी प्यार है सोने से।
0: बिल्कुल,
1: सोना मतलब सोना, नींद में सोना। अच्छा, गोल्ड वाला सोना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे अभी यहाँ पे सवाल पूछने का वक्त आ चुका है। ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में हम एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: अच्छा भाई, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मॉडर्न इन्वेंशन भी था जब, जिस टाइम पे ये चीज़ बनी थी, और उसके बाद जो है उसने एक बहुत ही अच्छे इन्वेंशन के लिए रास्ता भी बनाया। हम बात कर रहे हैं बाईसाइकिल के बारे में। बाईसाइकिल हम जानते हैं कि कितना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारे लाइफ में। जब से मोटर व्हीकल्स आने लगे तब से जो है बाईसाइकिल थोड़ा पीछे हो गया, मगर अभी भी जो है उसने अपनी जगह बना रखी है, ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को, एक थोड़ा और हेल्थ ओरिएंटेड जो है एक एस्पेक्ट बन चुका है, इसलिए वो थोड़ा पॉश बूजी सा भी हो गया है। बट या साइकिल से रिलेटेड बहुत सारी यादें हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम जो है साइकिल में एक चीज रिलेटेबल फीलिंग जो है ला सकते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे याद है मैं ट्यूशन जाता था साइकिल में, और एक दिन मेरे पापा ने मुझे साइकिल चलाते हुए देख लिया रास्ते में, और जिस दिन मैं उस दिन वापस आया ट्यूशन से तो मेरे से बोला कि कल से चल के जाइए ट्यूशन।
1: ये तो हुआ यार, ये तो सबके साथ हुआ है लाइफ में कभी ना कभी।
0: ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, बट उन सिचुएशन की ओर हम आएंगे। मगर सवाल ये पूछना चाहते हैं कि बाईसाइकिल को या फिर साइकिल को किसने बिल्ड किया था? ठीक है, ये सवाल एक सिंपल सवाल नहीं है, इसके दो आंसर्स आ सकते हैं। वो क्यों आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट आपको कौन सा आंसर मिल रहा है मुझे बताइए तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी भेज दीजिए, मुझे बताइए कि साइकिल किसने बिल्ड किया था। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे जो है, हमने पूछा था सवाल थोड़ी देर पहले ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में कि साइकिल किसने बनाई थी, कौन है वो इंसान जिसको श्रेय मिला है साइकिल बनाने का। और यहां पे हमारे पास जो है मैसेज आया है, और सरिता जी का मैसेज आया है, तो चलिए जरा वो मैसेज हम सुनते हैं और देखते हैं।
1: गुड मॉर्निंग सुदेव जी एंड आरजे कशिश।
0: मॉर्निंग।
1: एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है कार्ल वॉन डेरिस। एंड एक छोटा सा मैं स्टोरी सुना रही हूँ। जब मैं स्टडी के दौरान नीदरलैंड में थी, तो वहाँ पे साइकिल बहुत ज़्यादा है प्रचलन में। वहाँ सभी लोग साइकिल चलाते हैं। इवन वीसी जो हमारे कॉलेज की थी, वो आती थी, यूनिवर्सिटी की जो थी वो साइकिल से ही आती थी। जब हम लोग वहाँ से जाने लगे स्टडी के, आफ्टर स्टडी, तो हमने सब ने अपना साइकिल को ओपन रख दिया और रोड पे लगा दिया कि जिसको साइकिल चाहिए ले ले। बहुत बहुत वो हमेशा ही है, एक मेमोरी में है। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सरिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो है आंसर भी दिया, साथ ही साथ ये कहानी जो है, एक एनेक्डोट जो है अपने लाइफ से शेयर किया, दिल खुश कर दिया आपने। एक्चुअली मैंने भी ये सुना है कि नीदरलैंड्स में जो है साइकिल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लोग साइकिल चलाते हैं इधर उधर जाने के लिए। और बिल्कुल अच्छी बात है, इसलिए वहाँ के लोग जनरली फिट भी रहते हैं, क्योंकि बॉडी जो है डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, अच्छे से मूव कर रही है। और यहाँ पे इनका जो जवाब जो है इसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। देखिए, साइकिल के बारे में अगर हम बात करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ कशिश ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी।
2: Exactly. लेकिन साइकिल जिसने भी इन्वेंट करी उसने अच्छी साइकिल इन्वेंट कर दी, लेकिन मेरी स्लीप साइकिल का क्या?
0: स्लीप साइकिल का अगर आपको सिलसिला ठीक करना है तो जैसे आपने पहले बोला 11:30 सोना बंद कर दो।
2: हाँ, और सुबह सुबह उठ के साइकिल चलाऊं मैं?
0: नहीं नहीं, आप पहले सुबह उठने से पहले अच्छे से रात को सो जाओ, उसके बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत पिछले रात से होती है।
2: यस,
0: है ना, सही बोला ना? क्या बात कह रहा। तो अगर हम बात करें साइकिल के इन्वेंशन के बारे में, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, ठीक है। 1817 में, जैसे कि सरिता जी ने बताया, कार्ल वॉन राइस ने जो है एक फर्स्ट स्टेयरेबल टू व्हील्ड रनिंग मशीन इन्वेंट किया। इसमें पेडल नहीं थे, तो लोग जो हैं उसमें बैठ के अपने पांव से जमीन को धक्का देते थे, फिर आगे जाते थे।
2: जैसे वो कुछ
0: कभी कभी जब चेन गिर जाती है तो हम,
2: हाँ,
0: वैसे ही।
2: राइट।
0: 1839 में कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने, जो एक स्कॉटिश ब्लैकस्मिथ थे, इन्होंने एक पहला मैकेनिकली प्रोपेल्ड यानी कि पेडल ड्रिवन बाइसाइकिल बनाया। इसका श्रेय जो है इन्हें मिलता है। और 1860s में दो फ्रेंच इन्वेंटर्स थे, पिया मिखाओ और पिया लालमैन, इन्होंने जो है एक रोटरी पेडल लगाया और इसको एक वेलोसिपेड जैसा एक वो दिया, एक रूप दिया। तो तीन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तीनों ने अपने प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो एक सिंगल इन्वेंटर नहीं है,
2: लेकिन इन्होंने साइकिल के एवोल्यूशन पे, बाइसाइकिल के एवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा काम किया।
0: तो इन तीनों का नाम जो है जरूर यहाँ पे लेना जरूरी होता है। और यही बात बताते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सरिता जी आपका आंसर भी सही है और मोस्ट ऑफ द आंसर्स यही है उन्होंने भेजा है, कार्ल वॉन राइस। तो सबके लिए यहाँ पे तालियां बजेंगी भाई, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से हुई थी।
2: राइट।
0: और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
2: जीओ बिंदास।

0: बिंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: बहुत ही प्यारा गाना यार, बहुत ही प्यारा गाना। जैसे ही गाना शुरू हुआ था कशिश भी बोली यार ये बहुत
1: यार
0: प्यारा,
1: ये
0: गाना
1: बहुत प्यारा गाना है,
0: है ना, बहुत प्यारा बोलो आगे बोलो क्या हो गया,
1: सिर्फ हम यही कहते रह जाएंगे बहुत प्यारा गाना है बहुत प्यारा गाना है।
0: कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती है ना जिसको हम इसे एडमायर करने लग जाते हैं और हम इसे बोलते रहते हैं यार ये कितना बढ़िया कितना औसम है यार ये करके, ऐसे ऐसा ही ये गाना लगा मुझे। और ऐसा ही गाना थोड़ी देर में हम प्ले भी करेंगे आपके लिए, वो गाना कौन सा है जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मगर यहाँ पे फिलहाल हम बात करते हैं मौसम के बारे में, क्या आज मौसम मौसमिंग कर रहा है?
1: बिल्कुल नहीं कर रहा है, मौसमिंग गर्मिंग कर रहा है जो मुझे बिल्कुल अच्छाइंग नहीं लग रहीं हैं।
0: क्या बात कर रही है ये? ओके अभी का टेम्परेचर बता देता हूँ मैं, अभी का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और गेस व्हाट आज का लोएस्ट टेम्परेचर कितना है,
1: 36 डिग्री सेल्सियस
0: नहीं 35 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस
1: 46
0: और हवा बह रही है 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा थोड़ा ठंडक दे सकती है?
1: नहीं दे सकती।
0: देखिए हवा ठंडक तो नहीं दे पाएगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गर्मियों का मौसम है और गर्म हवा ही आएगी, मगर इस टाइम पे आपको अपना ध्यान भी रखना है, अच्छे से पानी पीना है, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। मैं ऑफिस के अंदर आगे सनस्क्रीन लगा के बैठा हूं।
1: पूरे धूप को जो है पार करने के बाद ही आगे सनस्क्रीन लगाते, मुझे ऐसा लगता है सही में कई बार लड़कों को ऐसा लगता है कि धूप में रहने के बाद आगे सनस्क्रीन लगा लो तो सारी टैनिंग चली जाएगी।
0: नहीं
1: अरे ऐसा नहीं होता,
0: वो जो अच्छा चीज जो हमें धूप से मिलना चाहिए वो सब मिल गया ना हम लगा लेते हैं ठीक है वैसा। और उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा वो यही है कि गाड़ी अगर आप बाहर निकल रहे हैं लेकर तो कोशिश करिए कि शेड में पार्क करें, अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे विंडशील्ड एक्सेसरीज ले सकते हैं जो आपके विंडशील्ड को कवर करेगा, थोड़ा थोड़ा सा जो है गर्मी कम रखेगा। और यही बात बताते हुए हम ये भी पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, आप फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई भेज दीजिए फोटोज,
1: यार फोटो भेज दीजिए यार, मतलब बाहर भले ही धूप हो रही है लेकिन लाइटिंग कितनी बढ़िया हो रही होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: एकदम ब्राइट ब्राइट दिख रहा होगा। सो जल्दी से अपने फोन को उठाइए, कैमरा ओपन कीजिए, एक अच्छी सी पिक्चर जो हम बहुत दिनों से कह नहीं रहे वॉलपेपर वर्दी फोटो जो है वो जल्दी से खींचिए और हमें भेज दीजिए
0: तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले जो है आप लोग हमें फोटोज भेजिए। और यहाँ पे आपके लिए कुछ गाने जो है इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला अरिजीत भाई ने,
1: ये गाना सुदेव के दिल की बात कह दी,
0: दिल मेरे दिल की बात क्या भाई, मेरे जिंदगी को गाना बनाया। मेरे से पूछा गया कि भाई कितने बार प्यार किया, तो मैंने बोला प्यार भाई कई बार होता है, उसको उन्होंने टाइटल बना दिया गाने। देखा ये क्या करें यार, अब इंसान जिए तो भी क्या करे,
1: इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है ना यार ये। यार यार यार
0: यू नो यू आर राइट बट आई एम सॉरी। क्या करूं मैं,
1: ये यही कहते हैं ना कि आई एम सॉरी यार, मैंने नहीं करना चाहता इस बार लेकिन फिर भी हो गया, क्या कर सकते हैं,
0: क्या कर सकते हैं। और जब हम प्यार में हो जाते हैं तो फिर हम यही गा देते हैं। तो चलिए बैरन सुनते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: से पहले यहाँ पे एक चीज जो है हम बताना चाहेंगे, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए थे, उन मैसेजेस को जरा हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। जैसे कि सामी भाई का हमारे पास मैसेज आया है, सामी भाई ने एक फोटो भेजा है हमें और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम भाई, हम दोनों बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से जो है जिंदगी बढ़ रही है आगे। और उसके साथ साथ जो है एक और मैसेज आया है हमारे पास, अबरार भाई का मैसेज भी आया है और अबरार भाई ने एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजा है एक फोटो के साथ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, थोड़ी ही देर में जो है हमारे हैं वापस और साइकिलिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, स्पेशली फिजिकल बेनिफिट्स एंड मेंटल बेनिफिट्स। अभी फिलहाल यहाँ पे हम जबरदस्त हिट में प्ले करेंगे निखिल पॉल की आवाज में शादी के साइड इफेक्ट्स का गाना।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
2: हिट है तो हिट है,
0: और फिट है तो हिट है। मैं आज हम बात करना चाहेंगे साइकिलिंग के बारे में। आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है और साइकिलिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं की तो यही बोलेंगे तो फिर क्या बात
1: करी
0: है ना। और सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो हम फिजिकल हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करें वो है हार्ट एंड लंग एफिशिएंसी। अगर हम रेगुलरली साइकिल करते हैं तो ये जो रेगुलर पेडलिंग जो है हमारे सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, रेस्टिंग हार्ट रेट को कम करता है, और ये जो फोर्स्ड वेंटिलेशन होता है ना जब हम साइकिल चलाते हैं उससे क्या होता है हमारा लंग्स जो है उसको ट्रेनिंग मिलती है ऑक्सीजन को और एफिशिएंटली यूज करने की। और जॉइंट फ्रेंडली वर्कआउट है क्योंकि साइकिलिंग जो है फ्लूइड को सपोर्ट करता है, सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे घुटनों पर कम स्ट्रेस डालता है, हमारे हिप्स पर कम स्ट्रेस डालता है, एंकल्स पे कम स्ट्रेस डालता है एज कम्पेयर टू वॉकिंग और रनिंग। उसके साथ साथ मसल टोनिंग एंड स्ट्रेंथ बेनिफिट्स भी हैं। हमारे क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स यानी कि जो लेग मसल्स है, पैर के जितने भी मसल्स हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। उसके साथ साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए हम अपना कोर भी जो है एंगेज करते हैं। इससे क्या होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है।
1: राइट, और देखिए यार ये सारे जो है ये तो हमारे फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, लेकिन मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी बाइसाइकिल यूज करने के बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो कम होती है, ब्रेन में जो है एंडोर्फिन जो है उसका रिलीज होना जो है वो बढ़ जाता है, एंड मूड जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तभी कुछ लोग जो है जो जैसे वॉक पे जाना चाहते हैं तो जो लोग साइकिलिंग करते हैं वो साइकिलिंग करना प्रेफर करते हैं जब उनका मूड खराब होता है। तो स्लो साइकिलिंग जो है कई बार आपका मूड भी इनहेंस करती है। सो इन शॉर्ट देखिए, चाहे फिजिकल हेल्थ के लिए हो, मेंटल हेल्थ के लिए हो, या बस आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए हो, साइकिलिंग को चुनना बेस्ट ऑप्शन है।
0: बिल्कुल, और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: शिव बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Afzal, Naseem Medical Center, Alkhur. तो एक बहुत बड़ा इश्यू है लोगों का, वो है बैड ब्रेथ। तो उसको दूर करने के लिए लोग च्युइंग गम खाते हैं, मिंट खाते हैं, तो पहले थे वो क्या सही है? नहीं, बैड ब्रेथ निकालने के लिए 2 बार आपका टीथ ब्रशिंग करना जरूरी है, और अगर ज्यादा बैड ब्रेथ है तो आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश से आपका बैड ब्रेथ धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन च्युइंग गम खाने से तो आपका दांत में स्टिकी सब्सटेंस आएगा, तो फिर डेंटल कैरीज होगा सडनली। इसकी वजह से आप माउथ वॉश यूज करो, आपका बैड ब्रेथ चला जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम में आप रेस कर रहे हैं, लेकिन माउथ वॉश की इफेक्ट तभी आएगी जब आप डेंटिस्ट के पास सफाई कराओगी। इसलिए हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट कंसल्टेशन का जरूरी है आप लोगों को। शुक्रिया।
2: डॉक्टर ऑन एयर brought to you by Naseem Healthcare.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है एक काफी बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं। कतर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही मेजर डेस्टिनेशन बन रहा है। K-12 प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की वैल्यू जो है वो $3.24 बिलियन की गई है और पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम जो कतर का है उसकी वैल्यूएशन 2034 तक $13.22 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट भी किया गया है। इस ग्रोथ को गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, बढ़ती पॉपुलेशन और डाइवर्स एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज को इनके कारण जो है इसको सपोर्ट मिल रहा है, जिस

0: से अलग अलग करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम्स की डिमांड भी बढ़ रही है।
1: कदर ने एजुकेशन को सिर्फ जो है पब्लिक सर्विस से जो है आगे बढ़ाकर अब एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो बना दिया है। इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का की ड्राइवर जो है वो बन चुका है अब कतर।
0: ओके, और 2026 के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 21.8 बिलियन कतर रियाल जो है एलोकेट किया गया है और 2025 के 19.4 बिलियन कतर रियाल से ज्यादा है ये। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है। 2024 to 2030 एजुकेशन स्ट्रेटेजी के तहत कतर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, स्टेम एजुकेशन, इनोवेशन और जॉब मार्केट रेडीनेस पर जो है बहुत अच्छा फोकस दे रहा है और PPP प्रोग्राम के थ्रू 45 नए पब्लिक स्कूल्स भी डेवलप किए जा रहे हैं।
1: नाइस, यानी ऑलरेडी कतर जो है एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा था एंड अब जो है सबसे बेस्ट बनने की तैयारी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अब्दास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बिन उमरान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के 4 रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए 1 कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए 1 एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में, ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।
7: One more time.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई स्टेशन क्लॉक में 8:14 हो रहे हैं और चलिए स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि फीफा फीवर जो है शुरू होने वाला है।
1: फीवर शुरू हो चुका है, मेरा क्रिकेट का फीवर जो है वो अब धीरे धीरे उतरता जा रहा है, फुटबॉल का फीवर चढ़ता जा रहा है। मैंने मतलब अपने आप को क्रिकेट में ये पूछने से कि ये टेस्ट में सब लोग जब सेम कपड़े पहनते हैं तो इन्हें पता कैसे चलता है कौन सी टीम कौन से उसके लिए खेल रही है, इससे मैं खुद को इतने पे ले आई थी कि मुझे DRS का मतलब पता चल जाए।
0: अच्छा,
1: हाँ, लेकिन
0: क्या है DRS का मतलब?
1: अब वो मत पूछो।
0: चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। बट फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा ट्रिविया जो है हम एक सवाल के रूप में लेकर आए हैं। या सवाल के माध्यम से जो है हम एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, मगर सवाल पहले पूछेंगे। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा अफ्रीकन नेशन है जिसने अपना पहला क्वार्टर फाइनल जो है पहुंचा था या फिर रीच किया था फीफा वर्ल्ड कप में, विच वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू रीच क्वार्टर फाइनल्स इन फीफा वर्ल्ड कप। तो ये आपको बताना है कौन सी कंट्री है और कौन से साल में वो पहुंची थी। और आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 3311063 पर, बताइए सवाल का जवाब क्या है, विच वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू रीच द फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी
1: बता ही दीजिए बिल्कुल अभी के अभी बता दीजिए, मेरी जो है फुटबॉल नॉलेज बढ़ाने में थोड़ा सा योगदान दे दीजिए। 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, एक बार आप सुदेव से सुन लीजिए क्योंकि शायद ज्यादा क्लियरली बोलते
0: जी। 3311063 है नंबर। तत्काल प्रभाव से इतना नजर लगा दिया ना कि क्लैरिटी के नाम पे, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी भेज दीजिए मैसेज और बता दीजिए सवाल का जवाब।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुखविंदर पाजी की आवाज में मॉनसून वेडिंग वेडिंग मूवी का गाना। यार मुझे क्या हो गया
1: मैं बहुत जोर से इंतजार कर रहे हैं
0: शायद सही में। देखिए यही होता है अगर आप ज्यादा देर तक स्क्रीन में टाइम बिताओगे तो आप W को भी M ही पढ़ोगे इसे ब्रेन रॉट भी कहते हैं। और मम्मी की भाषा में और कर ले फोन यूज इसे वैसे भी कहते हैं।
1: आपको ईशान अवस्थी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है?
0: डिस्लेक्सिया नहीं, वो बचपन से ही नहीं थी वो एकदम से आनी जाती ना।
1: नहीं, मैं रोने की बात कर रही
0: हूँ। नहीं, क्या ना रो पाना या रो पाना?
1: नहीं, हर बात पे रो देना
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले था, बहुत रोते थे हम, फिर हमने छोड़ दिया रोना, हमने रोना छोड़ दिया, जमाने ने रोलाना बंद कर दिया। क्या कर रहे
1: आप, वो क्यों नहीं ट्राई करते कभी?
0: क्या फर्जी मुशायरा क्या
1: चुप रहना
0: नहीं, वो आप ट्राई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा ठीक है, इसी को करने दो। देखिए वही करे जो आप पे जचता है ना।
1: आप कभी आरजे बनने का सोचो
0: मैं कभी नहीं सोच सकता यार, आरजे कैसे बन सकता हूँ।
1: कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? है मैं एक बार ना बैग लेने गई थी, एंड वहां पर मैंने बात करी एंड उन्होंने बोला कि मैडम आप बात बहुत अच्छी करते हो, आप कभी रेडियो में ट्राई करो। बोला भैया
0: हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसा आरजेइंग शुरू करने के बाद तो शायद नहीं हुआ है, बट उसके पहले कई लोगों ने बोला है तुम्हें आरजे बनना चाहिए, आरजे बनना चाहिए, आरजे बनना चाहिए। जब आरजे बनने आया तो मुझे पता चला कि आरजे बनना इतना आसान नहीं है।
1: इतना आसान नहीं है, सिर्फ आवाज अच्छी होने पे बात नहीं होती,
0: बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है।
1: किस्मत की बात भी होती है, जैसे किस्मत बहुत किस्मत से बन जाते हैं।
0: हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं किस्मत से बनाऊ भाई, मैं यहाँ पे खुदा को ही थैंक्स बोलूंगा, शुक्रिया बोलूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, 1000 बच्चे आए थे ऑल ओवर स्टेट वो ऑडिशन देने के लिए, उनमें से 11 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, फाइनल में मैं था। मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया आप लोगों को, क्या देख के लिया मुझे, तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब कि क्या आपको क्या ऐसा दिखा कि आपको लगा कि हाँ ये अच्छा फिट है। तो उन्होंने अपने रीजंस बताए थे, बट आई वाज क्वाइट शॉक्ड।
1: मैं भी रीजन बता सकती हूँ, आपकी समझाने की सिखाने की जो एबिलिटी है बहुत अच्छी, ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला ज्ञान दे रहा है, और इन्फॉर्मेशन वाली बात जो है वो पता भी चल जाती है इंटरेस्टिंग वे में। तो जैसे अभी आप मुझे बताने,
0: पूछा भी नहीं था
1: पर मैं तो बता रही हूँ ना कि क्यों, क्या सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, एंड मुझे लगता है यही हेल्प करके आप मुझे ये भी बता सकते हो कि अभी जो फुटबॉल वाला क्वेश्चन था।
0: देखिए ये अपनी तारीफ निकलवाने की निंजा टेक्निक थी मेरी, आप इसमें से सीख सकते हैं। तो मैसेजेस आए हमारे पास थोड़े, योगिनी का मैसेज आया, योगिनी ने मैसेज किया, बोला कि गुड मॉर्निंग कशिश एंड सुदेव, आई गेस इट्स मोरक्को। उसके साथ साथ मुझे सुषमा जी का मैसेज आया है, सुषमा जी ने भी बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज भेजा है और लिखा है कि गुड मॉर्निंग गाइस, आई वाज ड्राइविंग टू द ऑफिस, समटाइम्स आई गो एंड हर्ड अबाउट यू बोथ स्पीकिंग अबाउट द साइकिलिंग बेनिफिट्स एंड लर्न दैट टुडेज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, इट्स रियली ग्रेट टॉपिक दैट यू कुड टॉक ऑन अ रेडियो शो इन द मॉर्निंग, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ बेनिफिट्स आर ऑल ऑन गूगल, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हेन वी आर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई। बहुत ही सटल तरीके से फ्लेक्स किया है कि आई एम IIT, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s, वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाज ऑल द प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स यूज बाइसाइकल्स इनसाइड कैंपस, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ बेनिफिट्स बट ऑल्सो टू रिड्यूस पोल्यूशन। बहुत ही अच्छा है। मैं बता दूं आपको कि इंडिया में जो भी डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, एयरफोर्स अकेडमी हो, नेशनल डिफेंस अकेडमी हो, यहाँ पे भी साइकिल दी जाती है। जब फर्स्ट टर्म में कैडेट जाता है उसको साइकिल दी जाती है, मगर वो साइकिल के ऊपर से ज्यादा साइकिल उसके ऊपर होती है, पनिशमेंट मिलता रहता है। और कई दफा जो लोग एनडीए में जाते हैं उनको स्टार्टिंग के टाइम पे तो साइकिल उठा के ही भागना होता है।
1: रियली?
0: और हाँ, एनडीए में एक रूल ये भी है कि एनडीए में नहीं, हर डिफेंस इंस्टीट्यूट में ये रूल है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में ये रूल है कि 4 के ग्रुप में ही तुम साइकिल चला के जा सकते हो। अगर तुम अकेले हो तो यू हैव टू होल्ड योर साइकिल एंड रन, और यू हैव टू जस्ट रन, तुम साइकिल चला के नहीं, अकेले साइकिल नहीं चला सकते। इफ यू आर इन अ स्क्वाड देन ओनली यू कैन यू नो राइड दैट बाइसाइकिल। ऐसे बहुत सारे वियर्ड ही बोलूंगा मैं, क्या कहते हैं,
1: इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुदेव जो समझाते हैं ना तो मजा आता है।
0: क्या बात कर दी आपने, मतलब क्या बताया आप, तो और खुश कर दिया हमें। और यहाँ पे डोमिनिक जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी अपने साइकिलिंग ट्रैक का जो है एक वो भेजा है, एक स्क्रीनशॉट भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जियो बिंदास। और उसके साथ साथ सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब मैं बताता हूँ। सवाल मैंने ये पूछा था कि ऐसा कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जो सबसे पहले पहुंचा था फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में, और आंसर है कैमरून इन 1990। कैमरून ने 1990 में जो है सबसे पहली अफ्रीकन कंट्री बनने का जो है खिताब जीता, फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का, और ये जवाब तो हमारे पास नहीं आया है, मगर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास सारे जवाब हो। मुझे भी नहीं पता, जब सवाल देखा मेरे मन में भी पहले कुछ और कंट्रीज आई थी, मेरे मन में पहले साउथ अफ्रीका है, फिर मैंने नहीं, साउथ अफ्रीका ने तो होस्ट किया था, फिर कौन सा हो सकता है करके जब देखा तो पता चला कैमरून था। बट हाँ, ऐसे ही जान जान के पता चलता है कि कितनी अनजान चीजें हैं यहाँ पे।
1: अरे वाह,
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम अपनी तारीफ नहीं करवा सकते, चलिए सुनते हैं आमिर जमाल की आवाज में मर्डर मूवी का गाना। अखा बॉलीवुड एक तरफ
1: और
0: इमरान भाई
1: एक तरफ,
0: बस यही काफी है। जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: एक मीम मैंने देखा था जहाँ पे जगजीत सिंह जी और चित्रा जी मिलकर गाना गा रहे थे कोठे तया माहिया, और उसके ऊपर लिखा था दिस लंबर्गिनी जनरेशन विल नेवर अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग।
1: टोन सेम है ना
0: दोनों का, टोन सेम है वो, इसलिए क्योंकि दोनों पंजाबी टप्पे टप्पे जो है एक फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, तो इसमें लिरिक्स हम बदल सकते हैं, इसका पैटर्न सेम रहता है, इसका रिदम सेम रहता है, जहाँ पे वो कहते हैं कोठे थे माहिया, यार इसका आगे का लिरिक्स कहता है मिलना था मिला के नहीं तो खसमानो खा माहिया, तो वहाँ पे कहते हैं की लेना है मित्रा तो मिलन ते आ जावा पर डर लगता है चित्रा तो।
1: यस, और एग्जैक्टली इसी टोन पे ये गाना भी लिखा गया है लंबर्गिनी।
0: तो ये तो है, ये पंजाब में मुझे लगता है शादियों में लोग ये गाना गाते हैं ऐसे जब रिश्तेदार सब आते हैं, तो ये जो है इस गाने का काफी पुराना ये है टप्पे जो है पंजाब में, और मुझे लगता है कि इंडिया के साइड में पाकिस्तान के साइड में जो है ये तरीका है, ये गाने का तरीका रहता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं टेक जोन को। और टेक जोन में आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक काफी नए खबर के बारे में। ठीक है, उन्होंने बताया है कि AI पावर्ड वेयरेबल गैजेट्स जो है उन पर वो लोग काम कर रहे हैं, और कंपनी ने जो है दो कॉन्सेप्ट डिवाइसेस दिखाए, एक डेस्क के लिए AI एनेबल्ड क्यूब और एक वेयरेबल AI एक्सेस बैज। ठीक है, वेयरेबल बैज को नेक या बेल्ट पर पहना जा सकता है जिसे यूजर्स अपने AI एजेंट्स और वर्क टूल्स को लैपटॉप के बिना भी एक्सेस कर सकते
1: हैं। वाह।
0: और उसके बाद है बैज में कैमरा और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन भी है। डेमो में इसने ऑडियंस के फोटोज लेकर और यूजर को भेज दिया जो AI के सराउंडिंग्स समझने में हेल्प भी करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने इस टेक्नोलॉजी को न्यू फॉर्म फैक्टर बताया, लेकिन कंपनी ने अभी तक मार्केट में लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। फिलहाल कुछ 100 माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज की जो है इसमें टेस्टिंग चल रही है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है पहले भी वेयरेबल टेक में कोशिश कर चुका है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हॉलोलेंस, लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो गया था। AI वेयरेबल्स के कैमरास को लेकर प्राइवेसी कंसर्न्स भी जो है उठ रहे थे, जैसे पहले गूगल ग्लास और मेटा AI के ग्लास के साथ हुआ था। अब देखते हैं किस तरीके से इन सब चीजों से नेविगेट करके लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास रेडियो ओली।

0: बेहतर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 9:05 हो रहे हैं और यहां पे हम बात करना चाहेंगे साइकिल के बारे में। जरा कशिश मैडम बताइए आपके पहले साइकिल के बारे में। पहला साइकिल जब आपको मिला था, क्या था वो फीलिंग क्या थी, वो दिन कैसा था, बताइए जरा डिटेल में बताइए।
1: मेरी जो बाइसाइकिल थी वो मतलब हमेशा 4 पहियों वाली थी शुरू में।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मुझे साइकिल पे बैलेंस करना नहीं आता था।
0: okay.
1: तो उस पे वो जो साइड में सपोर्टर वाले व्हील होते हैं ना, वो लगे हुए थे। एंड मैं शायद मेरा 10th बर्थडे था, 11th बर्थडे था, तब मुझे बड़ी वाली येलो कलर की ऊपर सामने उसके बास्केट लगी हुई थी।
0: okay.
1: पिकाचू लगे हुए थे रिंग की जगह, ट्रिंग ट्रिंग की जगह वो चुई चुई चुई चुई करते थे। सो वो मेरी पहली साइकिल थी एंड वही मेरी साइकिल थी।
0: अच्छा।
1: वो मैंने जो है वो थोड़ी बड़ी साइकिल थी। तो वो मैंने जो है यूज करी जब तक मैं आई थिंक 8th क्लास में थी।
0: okay,
1: तब तक मैंने उसको यूज करी और उसके बाद मेरा भाई, क्योंकि मेरा भाई बड़ा हो गया था तो उसने वाली साइकिल चलाई एंड फिर उसने बोला कि मैं ये येल्लो साइकिल नहीं चलाऊंगा जिसपे डेजीज बने हैं, जिसमें पिकाचू लगा हुआ है, ये लड़कियों वाली लगती है। सो फिर उसके लिए साइकिल आई एंड वो कहीं जाता नहीं था, सिर्फ सर्कल लगाता था। तो उसके बाद कोचिंग जाने के लिए मुझे उसकी साइकिल मिल गई थी।
0: अच्छा।
1: तो मेरी साइकिल की ये स्टोरी थी। खैर ऊपर वाले का करम था कि मुझे जिद नहीं करनी पड़ी साइकिल के लिए कभी।
0: अच्छा।
1: पर ऑटोमेटिकली मिल गई। पर मेरे दोस्त जो थे
0: उन्होंने
1: बहुत रोना गाना मचाया था, तब जाके उन्हें एक साइकिल मिली थी अपने घर पे एंड वो मेरी साइकिल लेकर जाते थे चलाने के लिए। एंड मैं ना बीच में 5-5 रुपए भी लेने लग गई थी सबसे
0: कि, अच्छा,
1: कि 5 राउंड
0: बिजनेस
1: के 5 रुपए
0: बना दिया।
1: मैं साइकिलिंग करने के लिए बाहर जाती थी एंड वहाँ पे साइकिल खड़ी कर देती थी। तो मेरे दोस्त होते थे, मैं उनसे बोलती थी कि मैं तुम्हें 5 राउंड लगाने दूंगी बट मुझे आप 5 रुपये वाला कुरकुरे
0: दिलाओगे
1: या लेस अंकल चिप्स दिलाओगे, ऐसी चीज कर देती थी मैं। सो मैंने बिजनेस आइडिया भी बना लिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि बिजनेस जो है फैमिली में ही रन करता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और मैं अपनी कहानी में बताता हूँ। मुझे सबसे पहले जब साइकिल मिला था, पहले एक ट्राईसाइकिल था मेरे पास, ठीक है, तो वो याद है मुझे लाल रंग की ट्राईसाइकिल थी। और होता क्या था कि हम, ये बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था ना मेरा, तो सुबह उठ के जब उठ जाना होता था तो मम्मी आ जाती थी मेरे को रेडी करने के पहले, बोलती थी कि जा थोड़ी देर ट्राईसाइकिल चला के। तो मैं तब तक मम्मी खाना वाना बनाती थी, ये सब करती थी, तो मैं ट्राईसाइकिल चला के आराम से, काफी रेस्पॉन्सिबल अडल्ट वाली फीलिंग आती है एक्सरसाइज करके आगे, वो पसीना आ रहा जो नहा के रेडी हो जाते करके, ठीक है जाके नहा के रेडी होके जाना होता था। उसके बाद फिर जब मैं 2nd-3rd में कुछ था तब मुझे मेरी पहली साइकिल मिली, उसका स्टैलियन लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, काफ़ी प्यारी साइकिल थी, बहुत मस्त साइकिल, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत टाइम तक चली थी मेरे साथ, बहुत टाइम तक मेरे साथ ही थी। बड़ी साइकिल नहीं थी, छोटी साइकिल थी और मैं जल्दी बड़ा हो गया तो मेरी वो साइकिल छोटी होगी। और काफ़ी प्यारा साइकिल था। कई बार जो है, जो मेरे घर के पास में साइकिल की दुकान थी, वो भैया के साथ तो ऐसा रिश्ता बन गया था क्योंकि बीच बीच में खराब हो जाती थी, चेन गिर जाता था, कुछ
1: हो जाता था, टायर वो जाता है
0: उनको देता था, तो ऐसे बातचीत होने लगी थी। वो हमारे साथ फिर ऐसे खेलते थे, बैडमिंटन सब खेलते थे हम ऐसे। उसके बाद फिर लोकेलिटी बदली मैंने, उसके बाद फिर मुझे हरकुलिस की, और उस टाइम पे हरकुलिस का बहुत बड़ा प्रचलन चलता है भाई, जो जानते हैं वो जानते हैं, हरकुलिस का एक अलग ही लेवल का क्रेज था एक टाइम पे। हरकुलिस की
1: मैडी वाली फीलिंग आ जाती थी लोगों को उसमें बैठ के,
0: थंडर ड्राइव थंडर बोल्ट ऐसे करके कुछ नाम था उस साइकिल के मॉडल का, ठीक है, काफी प्लेन साइकिल, बट मैंने मेक श्योर किया कि मुझे वो वाला चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर वाला चाहिए, प्लेन वाला नहीं चाहिए,
1: बहुत होती थी
0: ऐसा, ऐसे कुछ छोटे छोटे डिमांड्स थे मेरे भाई। वो साइकिल आई, वो साइकिल आने के बाद फिर तो धूम मचाले, अलग लेवल की फीलिंग, ठीक है, इधर उधर भगा रहे हैं। और मेरी पता आदत क्या थी, अब साइकिल मिल तो गई, साइकिल मिलने के बाद क्या ना कि चलाने का मन खत्म हो गया, तो मैं क्या करता, साइकिल चला के जाता था, साइकिल वहां रखे क्रिकेट खेलता था और दोस्तों को साइकिल चलाने के लिए देता था। और ये मम्मी ने कई बार देख लिया, मम्मी ने बोला ऐसा है तो फिर तू साइकिल मत चला, तुझे चलाने के लिए दिया है तो तू चला। तो फिर वो थोड़ा कम हो गया, उसके बाद फिर ट्यूशन जाना शुरू किया, ट्यूशन जाना शुरू किया तो फिर साइकिल में इधर उधर आना जाना हुआ, बहुत जाते था मैं इधर उधर, हर जगह साइकिल में ही जाता था, चाहे मुझे कलरी के लिए जाना हो, ट्यूशन के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो मैं साइकिल में ही जाता था। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे साइकिल चलाते हुए देख लिया,
1: ये थोड़ी देर पहले बताया उन्होंने,
0: उन्होंने देखा और उन्होंने उस शाम को जब मैं ट्यूशन के बाद पहुंचा उन्होंने पूछा कि इधर आ जरा, मैं क्या हो गया तू समझता है क्या है खुद को। तो मेरे मन में आया कि वैसे तो मैं बहुत बढ़िया चीज समझता अपने बारे में, आपको क्या चाहिए,
1: आप कौन सा वाला जानना चाहते हो,
0: कौन सा वाला जानना चाहते हो ये बताओ, बढ़िया हम पूछ नहीं सकते। मैं क्या हो गया, बोले कि नहीं मैं देख रहा था तो ऐसे साइकिल चला के जा रहा था, अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक मेन रोड है हाईवे, ठीक है, वहाँ पे साइड में पेवमेंट है साइकिल चला के जाने का, मगर मैं रोड से साइकिल चला के जा रहा था क्योंकि हम में भी भाई गुरूर कम थोड़ी ना है, ठीक ही। तो फिर पापा ने बोला ये सही नहीं चलेगा, अब तू चल के जाएगा ट्यूशन। मैंने बोला नहीं मेरा टाइम बच जाता है। उन्होंने कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे,
1: जल्दी निकलो ना तुम, जल्दी निकलो
0: और अब जाओ, चल के जाओ, साइकिल में नहीं जाओगे। वहां से मेरे साइकिल की जर्नी खत्म हुई।
1: अब मुझे भी ऐसे डांट पड़ी है, लेकिन वो क्या पड़ी है, क्यों पड़ी है वो मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक आप लोग 111063 पर व्हाट्सएप करके हमें अपनी पहली साइकिल की स्टोरी जो है वो बताइए। आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो है वो हम मना रहे हैं, सुबह भी आपने उसी पर बात करी, इन्फॉर्मेशन दी काफी सारी। अब हम जरा इमोशनल एंगल पे बात करना चाहते हैं कि आपकी पहली साइकिल
0: निकाल के लग लो रुमाल, आज तो भाई आंखें झरझर बहने वाली है। तो यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Olive Short Break. Radio Olive Short Break. Short Break. Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness, and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133.

0: उदित जी और सुदेश जी की आवाज में सुना हमने गाना बड़े मियां छोटे मियां मूवी का टाइटल ट्रैक। कई लोग गलती से जो मेरा नाम है उसे सुदेव की जगह सुदेश ही बोल देते हैं।
1: हाँ, अक्सर मैंने देखा है।
0: फिर मैं भी सोचता हूँ इतने महान हस्ती के साथ नाम कंपेयर कर रहे तो हम क्यों ही मना करें। चलो ठीक है, जो चलेगा कोई बात नहीं। बट या आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे साइकिल के बारे में, साइकिल मेमोरीज के बारे में, क्योंकि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है और अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग रूल्स हम ये तो करेंगे। तो
1: खैर मैं बता रही थी कि मुझे किस तरीके से साइकिल की वजह से डांट पड़ी थी।
0: जी
1: सो क्या होता था कि मैं बहुत आलसी किस्म के इंसान हूँ, जैसे कि अब आपको समझ आ ही गया होगा।
0: ओके
1: सो मैं
0: क्या बात कर रहे हो, आलस आलस का भी हमें नहीं दिखा आपने।
1: So, जब मुझे कोचिंग जानी होती है, ट्यूशन जाना होता था, तो अच्छा। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं था।
0: अच्छा, आप
1: सिर्फ एक दो टर्न्स है।
0: कोचिंग मतलब
1: ट्यूशन, इलेवेंथ में।
0: ओके ओके ओके ओके, कोचिंग मत बोलो, कोचिंग होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आईआईटी जेईई इन सब की।
1: ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, ट्यूशन जाया करती थी।
0: हाँ, ठीक है, ये अच्छा।
1: उसमें दो तीन ही टर्न्स पड़ते थे और फिर आ जाता था, सीधी सीधी रोड थी।
0: ओके,
1: तो मैं क्या करती थी कि मैं शुरू में बहुत ज्यादा पैडल मार लेती थी एंड फिर उसको ऑटो पे चलने देती थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: कि अपने आप वो मुड़ रही है और वो धीरे धीरे करके पहुंच जाती थी वहां तक, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे और पैडल मारने की। सो ये करते हुए एक बार पापा घर पे थे, उन्होंने मुझे देख लिया कि भाई ये तो ये कर रही है। और मैं नानी के घर से जाया करती थी एंड नानी एंड सब लोग, और ये दो तीन बार हो चुका है, ठीक है। तो अब उन लोगों ने मुझे देख लिया कि ये शुरुआत में बहुत तेज चलाती है। अब उन्हें ये नहीं पता है ना कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी साइकिल एकदम जीरो की स्पीड पे हो जाती है।
0: वो बाकी नहीं देखते ना,
1: इसलिए उन्होंने मुझे फिर बहुत डांट पड़ी कि तुम बहुत तेज चलाती हो गाड़ी, तुम बहुत तेज। मैंने बोला गाड़ी
0: गाड़ी,
1: साइकिल को गाड़ी क्यों बोल रहे हो?
0: ना, मेरी साइकिल में मोटर है। क्या बात कर रहे हो आप,
1: क्या बात कर रहे हो आप? तो बोला कि नहीं तुम बहुत तेज चलाती हो, ऐसे नहीं कोई गाड़ी आ गई तो कोई बच्चा बीच में आ गया तो क्या करोगे?
0: ठोक देंगे और क्या करेंगे।
1: क्या बातें कर रहे हो यार। सो फिर ऐसे हुआ तो फिर साइकिल फिर मैंने चलानी थोड़ी कम कर दी।
0: जी
1: फिर मेरा भाई साथ साइकिल चलाने लग गया।
0: ओके।
1: तो फिर वो कंपटीशन करते थे हम, कि मैं बेटर चलाती हूँ कि तू बेटर चलाता है, और बस यही होता था।
0: बहुत बढ़िया। ये साइकिल के बारे में जब बात करें तो बहुत सारे मेमोरीज ऐसे आते हैं, क्योंकि हम भी साइकिल रेस ऐसे करते थे, साइकिल को स्किड करना, और भाई जो स्किड करके सबसे ज्यादा ऐसे निशान लेकर आता है वो सबसे कूल बंदा है, ठीक है। ये सब मतलब मुझे बताना है, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई टाइम मशीन बनाए और हम वैसे जा पाए वापस, और मुझे बोलना है, मुझे खुद से भी बोलना है और जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी बोलना है कि भाई ऐसा नहीं करते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बोलनी है, वो यहाँ पे हम बोल नहीं पाएंगे। मगर मशवरा यही है कि बताना है कि इनमें कुछ नहीं रखा।
1: Exactly, कुछ
0: क्योंकि
1: नहीं
0: मैं
1: रखा।
0: गिर गया था एक दिन स्किड करते करते, बहुत गंदा गिरा, मेरा यहाँ पे ऐसे छिल गया और बहुत बुरी हालत थी। और मेरे भाई के बारे में एक चीज बताता हूँ मैं, जब वो छोटा था उसको एक साइकिल दिलाई थी, तो उसके साइकिल की सॉरी खास बात ये थी कि उसमें हवा भरने की जरूरत नहीं थी,
1: ट्यूबलेस टायर था,
0: ट्यूबलेस था बिल्कुल, पूरा रबड़ाइज टायर था, तो भरा हुआ था बिल्कुल। और छोटा था वो, अब उसको पता नहीं था, बताया नहीं था क्या था, साइकिल रोकता नहीं था, ये ब्रेक दबा के, ये ब्रेक नहीं लगाता था, इसको साइकिल रोकना तो जाके ठोक देता है। ये दीवार ढूंढता है कि कहां मैं रोक सकता हूं।
1: सही बात है,
0: सही में मेरे सामने कई बार हुआ है। मैंने बोला कि भाई ये क्यों कर रहा है, कह रहा ये करने मजा आता है। उस टाइम में छोटा भी था, कितने मतलब 5 साल का 6 साल का कुछ होगा, ठीक है, ये करने मजा आता है। तो मैं बोलता, और अब जब मैं सोचता हूँ कि भाई 5-6 साल का छोटा लड़का अभी सेकेंड ईयर कॉलेज में है, तो मैं कितना बड़ा हो गया यार।
1: ऐसे होता है, जब मैं अपनी पुरानी साइकिल भी अभी कुछ साल पहले जो है वो साइकिल रखी हुई थी, तो हमारी फाइनल साइकिल थी जो मैं और मेरा भाई दोनों चलाते थे।
0: It's the final cycle.
1: So, वो फाइनल साइकिल जो है वो फिर बहुत दिन पड़ी रही घर पे, गैराज में रखी हुई थी, जब भी पेंट हो रहा है तो उसको उठा के रखा जा रहा है, तो सब बोलते थे कि अब इसको बेच दो। जब भी बेचने की बात आती थी, मेरे और मेरे भाई के आंखों में आंसू आ जाते थे, चला नहीं रहे हैं दोनों, टू व्हीलर चला रहे हैं, अपनी अपनी टू व्हीलर चला रहे हैं दोनों।
0: समझता हूँ मैं वो दर्द, मैं समझता
1: हूँ। फिर जब वो बेचने की बारी आई तो हम माने ही नहीं यार, मेरे भाई ने भी बोला कि नहीं नहीं इनको नहीं देंगे साइकिल, इनको ये अच्छे से नहीं चलाते, उनको नहीं देंगे साइकिल, ये अच्छे से नहीं चलाते। सो बहुत ऐसे मतलब जैसे बेटी की शादी करते हैं ना, वैसे हमने साइकिल का बायर ढूंढा था।
0: मैं समझ सकता हूँ ये जज्बात,
1: परख के
0: ये जज्बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साइकिल को जब बेचने की बारी आई मैंने मना कर दिया था, फिर जब मैं चला गया था दिल्ली से ट्रिवाना फिर उन्होंने बेच दिया और उनके प्लान्स में आड़े आने के लिए मैं नहीं था, बट ऐसा होता है। और यहाँ पे हमें मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने मैसेज भेजा है, उन्होंने बताया है कि मैं भी साइकिल से ही कॉलेज जाता था, बाइक मुझे बाद में मिली और मेरी पहली साइकिल यही थी, मेरे बड़े पहले चलाए थे और ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज उस जमाने में साइकिल भी एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता था। बड़ी जिद के बाद रो रो के साइकिल ली थी और वो भी भैया की यूज्ड की हुई। कोई बात नहीं भाई, होता है, मेरे भाई को भी पहले वही ऑफर किया था बट उसने मना कर दिया।
1: मेरे भाई ने भी सोचो एटलीस्ट 4-5 साल जाए वो सनफ्लावर वाली लिलीज वाली साइकिल चलाई थी, टोकरी वाली
0: भाई वो तो है, बट मेरे भाई ने मना इसलिए भी कर दिया क्योंकि पैडल पहुंच नहीं रहा था। तो फिर घर वालों ने जब बिठा के देखा पता चला ये तो पैडल बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत दूर है ये, तो फिर इसीलिए। बट एनीवे थैंक यू सो मच जी ये मैसेज हमें भेजने के लिए, कहानी बताने के लिए। यहाँ पे जबरदस्त हिट्स प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे हम साइकिल डे के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने मैसेजेस पढ़े थे कैसे लोगों ने अपने साइकिलिंग के मेमोरीज के बारे में जो है हमें मैसेज भेजा था। मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में जब हमने शो शुरू किया था हमने ये भी बोला था कि साइकिलिंग जो है पहले एक वे ऑफ कम्यूट की तरह शुरू हुआ था, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे धीरे बच्चों का एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया। अब धीरे धीरे धीरे फिर से उसमें एक एवोल्यूशन हुआ है। आजकल के जमाने में साइकिलिंग जो है एक काफी बढ़िया फिटनेस स्पोर्ट भी बन चुका है,
1: और ऐसी एक्टिविटी बन गई है जो जिसपे लोग जेल कर रहे हैं कि चलो जैसे पहले होता ना कि कॉफी पे चलते हैं या डांस करने के लिए चलते हैं, अब लोग साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं मिलकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक मैंने भी देखा, मेरे एक अंकल हैं, वो पहले काफी चबी हुआ करते थे और कुछ टाइम बाद जब मैं गया केरला गया तो मैंने देखा कि वो एकदम बिल्कुल पतले एकदम फिट से हो गए। तो हमने पूछा क्या क्या हो गया, तो बोले कि मैं साइकिलिंग करता हूँ। और वो हर हफ्ते साइकिलिंग करने जाते थे। एंड जब सबसे इत्तेफाक की बात ये है कि एक दिन वो मुझे आके बोले कि मैंने अभी तक तेरा शो सुना नहीं है, मतलब रेडियो में जाने के बाद मैंने अभी तक तेरा शो सुना नहीं है, बट तेरी तारीफ बहुत सुनी है मैंने। मैंने पूछा वो कहाँ से सुनी, बोले कि हमारे साइकिलिंग क्लब में तुम्हारे कॉम्पिटिटर की प्रोग्राम है डाती है, तो उन्होंने बताया है। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि मेरा एक नेफ्यू है वो रेडियो में काम करता है, स्टेशन में काम करता है। तो बोली यार यहाँ मैंने सुना है ही सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है करके। मैं बोला वाह यार वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं अपनी तारीफ करवाने की निंजा टेक्निक।
1: कोई भी देखिए देखिए कितना आसानी साइकिल से अंकल पे जाके उसके बाद फिर कंपटीशन पे जाके तारीफ पे आ गए, कितना बढ़िया है।
0: देखिए अगर एक चीज हमें हम शिद्दत से चाहते हैं तो वो कर दिखाने का कोई ना कोई रास्ता हमें खुद ढूंढना पड़ता है।
1: और अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना खुद की तारीफ की जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी काफी चौंक गया था, बट उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली जहाँ से मैं आया था त्रिवेंद्रम में काफी बड़ी साइकिलिंग कम्युनिटी है। इवन वहाँ पे एक बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर है इंडिया में, अभी शायद वो रिटायर हो गए हैं, ऋषिराज सिंह करके, वो भी साइकिल चलाते थे। वो सिटी से साइकिल चला के बीच तक जाके वहां से घूम के फिर वापस साइकिल में आते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल
1: चलाते हैं। एंड मैं भी जब भोपाल में थी तो एक साइकिलिंग क्लब जो था वो मेरे हर कोई भी इवेंट में मैं उन्हें इनवाइट करती थी, वो अपने सारे साइकिल ग्रुप को लेके पूरे गियर्स पहन के आते थे। एंड एजेड से एजेड लोग, मतलब मैं यहाँ पे चार कदम चलने में थक जाऊं वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो है उन्होंने साइकिल चलाई हुई है। एंड वो डेली साइकिल से कम्यूट कर रहे हैं। एंड कई सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं एंड अलग अलग जो बहुत क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं उन्होंने साइकिल को जो है एज अ मीडियम ऑफ हीलिंग जो है वो चुना, चाहे वो मेंटली खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की बात हो या फिजिकली फिट रखने की बात हो, साइकिलिंग को अब लोग एज अ ऑप्शन नहीं एज अ प्रायोरिटी चुन रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एंड अब कहीं ना कहीं जहाँ पे पहले ये कहा जाता था ना कि यार साइकिल चला रहे हो, जब बच्चे होते थे हम कि यार हमारे पास तो टू व्हीलर है एक्टिवा है एंड तुम्हारे पास साइकिल है, सो लेकिन अब जो है वो बूजी कैटेगरी में पहुंच रही है साइकिल।
0: बिल्कुल साइकिल ग्रेट बूजी बन चुका है। और इसी खुशी में एक साथ मिलकर हम जन्नत मूवी का गाना सुनते हैं के आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक,
0: पहला जादू।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस

0: सचेत टंडन की आवाज में मलंग का गाना। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है हमारा टाटा बबाई करके निकल के जाने का वक्त हो चुका है क्योंकि 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में मुस्कान यहां आ जाएगी आपके साथ बात करने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान फैलाने के लिए पूरे फैलान के साथ। तो खुली बाहों से मुस्कान का स्वागत कीजिए और जितना प्यार हमें दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार दीजिए। और जाते जाते जाते यही याद दिलाएंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। और एक बहुत ही प्यारा गाना प्ले करते हैं हम, जरा टाटा बाबाई करते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का गाना है ये, श्रेया घोषाल और फरहान साईद ने मिलके गाए। एक्चुअली ओरिजिनल गाना जो है फरहान साईद का ही है, उसे बॉलीवुड में लिया गया है। काफी अच्छा रेंडिशन है। इस गाने को सुनते हैं, एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं, टाटा बाबाई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है काफी बढ़िया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ऑन सेइंग
1: जियो बिंदास।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है. कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ हमें हर रोज एक ब्लैंक पेज देती है, ठीक है? कल का दिन चाहे अमेजिंग रहा हो या ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हो या फिर बहुत ही स्मूथ, पर हर दिन एक नया चांस मिलता है और इसीलिए मुझे मॉर्निंग बहुत पसंद है, क्योंकि मॉर्निंग एक रिमाइंडर है कि लाइफ रीसेट बटन दे रही है. और आज के शो में भी क्रिकेट है, योगा भी है, यू नो बुक्स भी है, साइकोलॉजी भी है और लाइफ के कुछ ऐसे लेसन भी हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सिर्फ किताबों से सीखने के लिए मिलते हैं या लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए मिलते हैं. वो स्कूल बुक्स या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से आपने सीखा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता. मेरी चाय तो एकदम तैयार है क्योंकि यू नो मैं यहाँ पर चाय के साथ साथ आपके साथ बातें करने वाली हूँ. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं लाइफ मस्त है, क्योंकि आज आई हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू टॉक. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेसन क्या है? एक मैच से कहानी खत्म नहीं होती, ये है पूरी स्टोरी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। इंग्लैंड विमेन ने, अगर मैं बात करूं रीसेंट T20 इंटरनेशनल में, इंडिया को डिफीट किया है। और स्पोर्ट्स की ब्यूटी भी यही है भाई, कभी आप जीतते हो कभी आप सीखते हो। और विमेन्स क्रिकेट जो है वो दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में से एक बन चुका है। अटेंडेंस रिकॉर्ड टूट रहे हैं और ब्रॉडकास्ट नंबर इंक्रीज हो रहे हैं रेगुलरली, और यंग गर्ल्स के लिए रोल मॉडल्स भी बढ़ रहे हैं। और हर स्ट्रॉन्ग टीम कभी ना कभी डिफीट फेस करती है, ये तो फिक्स है ही। मतलब आज आप जीतोगे कल आप हारोगे, या फिर हारना नहीं कहते इसे, एक्चुअली हम सीखना कहते हैं। सो आपके हिसाब से लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या कम बैक करना? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

देखो भाई, ऐसा है कि टैलेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेम्परामेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी काफ़ी सारे लोगों के साथ किसी टूर्नामेंट में खेल रहे होते हो। सो इस बार आईपीएल की बात करती हूँ। एक इंसिडेंट के बाद टिम डेविट को डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ा और मैच फी का आधा हिस्सा भी कट हुआ। सो बात ये थी कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ स्किल का गेम नहीं होता, प्रेशर मैनेजमेंट भी होता है और वो आपको आना चाहिए भाई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। कभी ऑफिस में, कभी ट्रैफिक में, कभी घर में गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए। सो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ ऐसा किया होगा जिसमें कभी कभी मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने इमोशनल जो आपके इमोशंस होते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। सो आपको ना कहीं ना कहीं तो इसका कहीं पे तो करना पड़ेगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप प्रेशर में काम रहते हो या पहले रिएक्ट करते हो और बाद में सोचते हो। बाय द वे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा रिएक्शन तो अपने आप निकल जाता है और वो मेरे चेहरे पे आ जाता है। 3311106 इज माई नंबर। वैसे इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आप अपनी बात, दिल की बात कहना चाहते हो तो कह देना चाहिए। पर हाँ, आई नो कि ऑफिस में या ट्रैफिक में या घर पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिएक्शन की वजह से किसी को बुरा लग जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। सो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि क्या प्रेशर में आप काम रहते हैं या फिर आप पहले रिएक्ट करके बाद में सोचते हैं। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Life's

0: सो एवरी डे आई टॉक अबाउट वन बुक, और आज की बुक साइंस के नाम पर है लेकिन लाइफ के बारे में है. मतलब नाम में केमिस्ट्री है पर एक्चुअली है ये पूरी लाइफ की केमिस्ट्री. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और किताब का नाम है लेसन्स इन केमिस्ट्री.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो रीसेंट ईयर्स की बिगेस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है. ये स्टोरी है एलिजाबेथ के नाम की, एक साइंटिस्ट थी, लेकिन ये साइंस की स्टोरी कम और रेजिलेंस की स्टोरी ज़्यादा है. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये किताब की है कि बहुत फनी भी है, इमोशनल भी है और इंस्पायरिंग भी है. इसका मैसेज ना इतना सिंपल है कि आपको लगेगा यार इतनी बड़ी किताब और इतनी सिंपल लैंग्वेज में लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए. ये पूरी किताब आपको सिखाती है. सो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी लाइफ में किसी ने कभी बोला था कि तुमसे नहीं होगा और फिर आपने करके दिखा दिया? मतलब ऐसा बहुत बार होता है यार, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, कहीं पर भी. मतलब कई बार ऐसा होता है कि यार लोग तो कहते हैं यार ये कैसे होगा, तुम कर पाओगी ना, या तुम कर पाओगी ना, पर एक्चुअली आपको पता होता है कि यार आप कर लोगे. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

भाई वैसे तो स्टार्टिंग में कोई भी सीरियसली नहीं लेता था एक्सरसाइज, मतलब हर कोई जिम जाना प्रेफर करता था, लेकिन धीरे धीरे अब इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में यू नो जगह मिल रही है। सो कल यानी कि 4 तारीख से इंडिया के अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है। सो इसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज के एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन पता है क्या है कि ओलंपिक्स 2036 में स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसे इंट्रोड्यूस किया जाए। सो रिसर्च के अकॉर्डिंग योगा से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं करता बल्कि बैलेंस, ब्रीदिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस, इन सबको भी बढ़ाता है। सो सब पर यू नो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, और ऑनेस्टली आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में शायद इसीलिए योगा जो है वो ग्लोबली पॉपुलर हो रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं जब भी यू नो सोचती हूँ कि हाँ हाँ आई विल स्टार्ट, पर मुझे ऐसा लगता है यार इतना स्लो है कि आपको इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। स्टार्ट करने के बाद आपको एटलीस्ट कुछ दिन रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बाय द वे आई हैव अ क्वेश्चन विद यू, कि आपने कभी योगा ट्राई किया है और कितने दिन कंटिन्यू किया है, ये मेरा सवाल है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: दिस इज अमाया दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: So, कल तक कॉफी ट्रेंड थी और आज सब ग्रीन ड्रिंक लेकर घूम रहे होते हैं विच इज माचा. सो आजकल ना सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स माचा के बहुत दीवाने हो रखे हैं. ऑफकोर्स उसके बहुत सारे फायदे भी होंगे, लेकिन माचा बेसिकली पाउडर्ड ग्रीन टी होती है और कॉफी जो है वो क्विक एनर्जी देती है, लेकिन माचा जो है वो कंपैरेटिवली स्मूदर एनर्जी रिलीज करती है. बहुत ही स्लो है ये और टेस्ट सबको पसंद नहीं आता. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. इसीलिए कुछ लोग आफ्टरनून क्रैश को अवॉइड करने के लिए माचा चूज करते हैं. उनको लगता है कि नहीं यार, ये एकदम से एनर्जी दे देता है, उसके बाद फिर जो रात है उसको आपको नींद नहीं आती. तो लोग 12 बजे के बाद या फिर मॉर्निंग में कॉफी पीने के बाद शाम को या दोपहर में कॉफी को अवॉइड करते हैं सो दैट उनका स्लीप स्केड्यूल खराब ना हो. लेकिन सोशल मीडिया ने इस ड्रिंक से ज्यादा लाइफस्टाइल इसे बना दिया है और क्वेश्चन यही है यार, आप टीम कॉफी से हो या टीम माचा से? 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: सो थोड़ी देर पहले जब टिम डेविड की बात हो रही थी, तब मैं यही बोल रही थी कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, पेशेंस की है. सो ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 10 दिन जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, छोड़ कर बैठ जाते हैं. फिर रिसर्च भी बार बार यही कहती है कि हैबिट बिल्डिंग टाइम लेती है भाई. इसीलिए 100 डे रूल का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था पूरे वर्ल्ड में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब आप कोई नया चीज़ ट्राई करते हो, चाहे वो आपका फूड इनटेक है, प्रोटीन इनटेक है, या फिर कोई जिम है, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी जो आपको लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग है, उसके लिए आपको 100 डे रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाना पड़ेगा. फिर आप डिसाइड करो रीडिंग, फिटनेस, लैंग्वेज लर्निंग, क्या आप सीखना चाहते हो, किस पर आप फोकस करना चाहते हो. सब में कंसिस्टेंसी एकदम मैजिक की तरह काम करती है. तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये 100 डे रूल बनाना ही पड़ेगा. सिर्फ 3 महीने कुछ दिन, राइट, 90 डेज में 3 महीने हो गए और बस 10 दिन. अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आपको किसी भी चीज की.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और वक्त हो गया है जोहर की अजान का.

योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

I still remember 2017 में जो awkward बात किसी ने बोली थी वो भी मुझे याद है. So funny बात क्या है पता है आपको? आपको याद है, बाकी किसी को भी नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं. और I usually talk about this effect क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, पर एक्चुअली हम बस अपने बारे में नोटिस करते रहते हैं और सोचते रहते हैं. रियलिटी क्या है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, उनके पास नहीं है इतना टाइम कि वो आपके बारे में सोचें. सो एम्बैरेसिंग मोमेंट जो है वो इमोशनल मेमोरी क्रिएट करते हैं, इसीलिए ब्रेन उन्हें लॉन्गर टाइम के लिए याद रखता है. एंड आई विल से कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको लगता है कि यार इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, तो मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ आपके लिए ही यादगार है, बाकी तो सब भूल भी चुके हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो यूजुअली क्या होता है ना, मेरा आपसे हर दिन एक सवाल होता है, तो आज का सवाल भी यह है कि आपकी लाइफ का सबसे फनी एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था, कितने साल पहले था. और नंबर सेम 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: भाई ऐसा कहा जाता है कि जो लग्जरी है वो चिल्लाती नहीं है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है कि आजकल लोग क्वाइट लग्जरी को पसंद करते हैं, यानी एक्सपेंसिव चीज़ें विदाउट लोगोस, कोई बड़े बड़े ब्रांडिंग नहीं, कोई शोइंग ऑफ नहीं, मतलब बस धीरे से आप एक प्लेन टी शर्ट या फिर एक सिंपल सी ड्रेस खरीदते हो और उसके बाद एक एलिगेंट सा लुक आ जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बाय द वे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई ट्राई कि मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड्स के पास ना जाऊँ, बल्कि जो ये रेगुलर ब्रांड्स होते हैं जिनके पास अच्छा कपड़ा होता है, जिनके पास अच्छे कंफर्टेबल शूज होते हैं, जिनके पास अच्छी वॉचेस होती हैं, मैं वो खरीदूं सो दैट मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन हो। बट कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पेयर ऑफ शूज़ अगर आपके पास सिर्फ दो ही हैं या तीन ही हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन इट शुड बी अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील। पर रिसर्च क्या कहती है वो बताती हूँ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो वेल्दी लोग होते हैं वो ज़्यादातर कंफर्ट और क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी लोगों से। इसलिए कभी कभी सबसे ज़्यादा जो रिच लोग हैं वो रूम में सबसे सिंपल कपड़े पहनते हैं, मतलब दे ऑलवेज वेयर सिंपल शर्ट्स, पैंट्स और बहुत ही क्लासी कपड़े जो वो अगले कई सालों तक रिपीट कर सकते हैं बिना किसी इस बात के सोचे कि यार ये तो अब ट्रेंड में है ही नहीं। सो आप फैशन में ब्रांड्स देखते हो या फिर स्टाइल, बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हम अगर बचपन की बात करें तो बचपन की कुछ मेमोरीज होती हैं वो कभी भी गिफ्ट से नहीं बनती, ट्रेडिशन से बनती है। और मतलब एक बार सोचिए कि चाहे वो ईद की मॉर्निंग है, कोई फैमिली लंच है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरी है, ये सब छोटी छोटी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ये हमें लगता है उस टाइम पे बहुत छोटी, लेकिन सालों बाद यही स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी बन जाती है। इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फैमिली रिचुअल्स इमोशनल सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, और इसीलिए बचपन की कुछ ट्रेडिशंस कभी हम भूलते ही नहीं है। हमें हमेशा याद रहता है कि हमारे घर में तो ऐसे सेलिब्रेट होता है, हमारे घर में तो बर्थडेज पे ये किया जाता था, हमारे यहाँ पर मम्मी ऐसा करती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी फील कि यार जो बचपन में हमने चीज़ें देखी होती हैं वो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके घर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत सुकून देती हैं, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाती हैं। बाय द वे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बचपन में मम्मी जैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी, हर दिन सुबह बर्थडे का दिन बहुत स्पेशल होता था, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। सो आई फील कि यार बर्थडे वाले दिन तो सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। बाय द वे व्हाट डू यू थिंक, आपके घर की ऐसी कौन सी चीज है जो आप आज भी कंटिन्यू करते हो? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप

सो दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि भाई अभी मुझे जाना होगा. वी विल मीट टुमारो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बेसिकली हर अचीवमेंट ना एक दिन में तो नहीं बनती. आज जो सक्सेसफुल लोग नजर आते हैं उनकी सक्सेस के पीछे बहुत सालों की कंसिस्टेंसी होती है. हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो कितना सक्सेसफुल है, पर जर्नी तो हमने देखी नहीं. तो अगर आप भी प्रोसेस में हो, पेशेंस रखिए. ग्रोथ स्लो हो सकती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. और याद रखना होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स ही जो प्रोग्रेस है वो देते हैं. आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है. स्माइल करते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए लाइफ मस्त है. सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. पर कई बार ना लाइफ में हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट सम मंथ्स और सम ईयर्स. पर फिर जो हमें मिलना होता है वो मिल ही जाता है, ऐसा कहा जाता है. सो आई विल से कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस लेना बाकी है तो सोच समझ के सारी चीज़ें अच्छे से डिसाइड कीजिए, अच्छे से डिस्कस कीजिए. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: मॉर्निंग्स एंड नाइट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. तरीशा के साथ आप Olive Recharge लेकर आ गई जी. मैं आशा दाई और जगजीत सिंह जी की आवाज में जब सामने तुम आ जाते हो. और ब्यूटिफुल ट्रैक यार, और बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि वेंसडे है. वीकेंड एकदम नजदीक आ चुका है, बट बाहर निकल रहे हो तो जरा संभाल के रहो, क्योंकि 2-5 मिनट के लिए भी अगर आप इस धूप में खड़े हो जाओ ना, सिर जो दर्द करने लगता है. एंड आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दैट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड. ऐसे खाने खाएं जो कम ऑयली हो, जो फ्रूट्स जो खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, वाटरमेलन एंड ऑल दैट, यू नो. सो प्लीज अपना ख्याल रखें और बताएं मुझे कैसे हैं, क्या हाल चाल है, हाउ हैज द डे बीन सो फार.

I love you का unplugged version for you and this beautiful one, yeah. कितना सुंदर गाना है. कई बार लाइफ हमें ऐसे ही सरप्राइज कर देती है उन चीजों से जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता. सरप्राइजेस इतने प्यारे होते कि सेलिब्रेशन तो बनता है. और इसी बात पे सुन रही है रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान.

0: Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness, and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: Arijit Singh ki awaaz mein phir kabhi from the movie MS Dhoni only on Radio All 106.3 FM. Tanisha aapke saath All Every Chart chal raha hai yahan par aur ek bahut badhiya cheez main aapko batane wali hu. Dhyan se suniye zara aur aap apply kijiye apni life mein, theek hai? Dabbe mein dabba, dabbe mein cake. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक. अपने ऊपर भरोसा रख यार, तू है लाखों में. यस मेरी जान, अपने आप को किसी से भी कम समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट ऑल यू कैन डू नोबडी एल्स कैन डू दैट. सो बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड कीप मेकिंग दोज एफर्ट्स. जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करोगे ही करोगे. थोड़ी देर हो सकती है बट डेफिनेटली करोगे. ऑन दैट नोट, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the hour.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Afzal, Naseem Medical Center, Al Khor. तो एक बहुत बड़ा इश्यू है लोगों का, वो है बैड ब्रेथ। तो उसको दूर करने के लिए लोग च्युइंग गम खाते हैं, मिंट खाते हैं, चुपे लेते, वो क्या सही है? नहीं, बैड ब्रेथ निकालने के लिए दो बार आपका टीथ ब्रशिंग करना जरूरी है, और अगर ज्यादा बैड ब्रेथ है तो आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश से आपका बैड ब्रेथ धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन च्युइंग गम खाने से तो आपका दांत में स्टिकी सब्सटेंस आएगा, तो फिर डेंटल कैरीज होगा सडनली। इसकी वजह से आप माउथ वॉश यूज करो, आपका बैड ब्रेथ चला जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम में आप रेस कर रहे हैं, लेकिन माउथ वॉश की इफेक्ट तभी आएगी जब आप डेंटिस्ट के पास सफाई कराओगे। इसलिए हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट कंसल्टेशन का जरूरी है आप लोगों को। शुक्रिया।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थ केयर।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में ओम शांति ओम से बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई, एकदम करेक्ट बात है। मान लेना कोई बोल रहा है तो ऐसे नहीं बोलना अरे नहीं नहीं नहीं अब तो बहुत बोल गए। मॉडेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट ले दे रहा है ना तो उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करो। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चैट चल रहा है यहाँ पर एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द पैटर्न्स इन आवर लाइव्स। सो आपको भी कभी कभी लगता है कि यार यू नो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी अगेन एंड अगेन, लाइक कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ पास्ट में हुई थी एंड देन इट हैपेंस अगेन एंड लाइक ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार। And I have met a lot of people out here जो same चीज़ feel करते हैं और मैं भी feel करती थी। Then I realized कि you know this is what universe does with us। वो हमें वही patterns बार बार repeat करके दिखाता है क्योंकि उसमें से कुछ lessons हमें सीखने की ज़रूरत है to move forward। और जब तक हम वो lessons नहीं सीख लेंगे हम उस लूप में फंसे रहेंगे। सो राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि आप उस लूप में फंसे हैं तो ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द लेसन इज, वो क्या सिखा रहा है। अगर आपको पता है कि क्या लेसन है व्हाट एवर द सिचुएशन इज राइट नाउ उससे, तो थोड़ा यू नो एग्जीक्यूट करो, काम करो उस पे यार, क्योंकि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आल्सो द पैटर्न इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन और लूप पे चल रहे हैं। एंड बाकी सब सही है यार, अच्छी अच्छी चीजें सोचो कि लाइफ बहुत बढ़िया है, ऑल्स गोना बी वेल। सोचो जल्दी से विंटर आ जाएगा तो आ जाएगा, जल्दी से गर्मी चली जाए, मैं तो यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ इस वक्त। भाई साहब सेंडिंग बहुत ही प्यारा गाना राहत साहब की आवाज में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: तनिषा
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और Katara Cultural Village Foundation ने लॉन्च कर दिया है Katara One Loft Race 2026. This is an international homing pigeon competition और इसका जो प्राइस पूल है भाई क्रेजी है. It is $205,000 which is ₹747,000 Qatari Riyal. Yes. तो जितने भी pigeon breeders हैं या enthusiast हैं from Qatar and abroad, they all can participate and pigeons can be submitted from June 10th to August 31. रेस हेडक्वार्टर्स जो है उमबरा का वहां पर और ये जो कॉम्पिटिशन है इट विल फॉलो द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बेंजिंग वन लॉफ्ट रेस सिस्टम वेयर ऑल बर्ड्स रिसीव द सेम ट्रेनिंग एंड रेसिंग कंडीशंस और इसका जो एंट्री फी है वो $300 है पर पिजन और एंट्रीज मस्ट बी सबमिटेड इन इवन नंबर्स ओनली मतलब ऑड नंबर की एंट्रीज नहीं चलेंगी अगर आप एक से ज्यादा सबमिट कर रहे हो तो इट हैज टू बी आइदर टू और फोर ऐसे थ्री या फिर फाइव वो सब नहीं चलेगा पार्टिसिपेंट्स

0: must pay 50% upon delivery and the remaining amount after the official training stage. और जितनी भी फी है सब नॉन रिफंडेबल है. तो अगर है आपके पास कोई भी पिजन एंथुजियास्ट और ब्रीडर, डू लेट देम नो अबाउट दिस, बिकॉज भाई क्या क्रेजी प्राइस है यार. इसी बात पे रूपदी रानी भेज रही हूँ आपके लिए सुंदर रेडियो ऑलिव टू विंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ के की आवाज में अजब सी अदाएं हैं. Beautiful track. और ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर. एंड भाई, कल बात की थी ना हमने कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, उसका एक और लाइफ एग्जाम्पल आ गया है. सो अभी आप सोशल मीडिया पे जब इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉल करते हैं तो देख ही रहे होंगे, हर थोड़े स्क्रॉल के बाद ये वाला जो एक न्यूज है वो जरूर आ रहा है. दैट इज अ केरला मैन रिसीव्स हिज जॉब लेटर 60 इयर्स के बाद. उन्होंने 60 साल पहले अप्लाई किया था एंड नाउ ही गॉट दैट जॉब, बट ऑब्वियसली ही हैज पास द एज सो ही कैन नॉट ज्वाइन दैट जॉब एनी मोर. लेकिन आया तो सही, ठीक है, दैट ग्रैटिट्यूड हैज टू बी देयर. एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि एफर्ट्स डालते जाओ, जो आपके लिए लिखा है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, ना कोई रोक सकता है आपको मिलने से. समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी, इसी बात पे जबरदस्त हिट आपके लिए डेस्टिनी में था, आ गया. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: अच्छी लगती हो और अच्छा लगता है जो अभी मैं बताने वाली हूँ कि हम सब जो करते हैं। You're listening to Radio 106.3 FM, तनीषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर। एंड आज का जो वर्ड है ये हम सबको करना बहुत ही पसंद है,
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
0: सो द वर्ड इज लॉलीगैग, LOLLYGAG, लॉलीगैग। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं एग्जाम्पल देकर ही बताती हूँ आपको। सो जब अभी ईद की लंबी छुट्टियां मिली थी, लॉन्ग वीकेंड था, सब काम ऐसे धीरे धीरे आराम से हो रहा था, यू नो, पहले तो ईद के सेलिब्रेशंस के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, उसके बाद ऐसे चिल हो गए थे कि ठीक है देखते हैं आज दिन में क्या करना है, सोए हैं तो सोए ही हैं, कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, यू नो, डूइंग ऑल दिस, मूविंग वेरी स्लोली एंड कभी कभी टाइम वेस्ट करना, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड डूइंग लॉलीगैग। सो समबडी इज डूइंग दैट इन द ऑफिस, यू नो, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू वर्क बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर जस्ट लॉलीगैगिंग। यस आई नो, किसी ना किसी का तो ऐसे नाम दिमाग में पॉपअप हुआ ही होगा, तो बताना चाहोगे तो शेयर कर सकते हो मुझसे 3311106 पर। और आजकल ये लिबर्टी बहुत कम मिलती है, वैसे हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि यू नो लाइफ की हसल बसल में फंसे रहते हैं तो लॉलीगैग करने का वक्त नहीं मिलता है ना। पर जब मिलता है तो क्या करते हो, किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हो, ये भी जानना चाहूंगी 3311106 पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

shopping. And right now when you go to a mall, yahi hota hai na, it's kind of a manipulation because आपको जिस स्टोर पर जाना है उस स्टोर तक पहुंचने के लिए आपको और 50 स्टोर्स क्रॉस करने पड़ते हैं और बीच में टेम्पटेशन हो जाती है एंड दैट इज ह्यूमन नेचर. उस चीज के साथ खेला गया एंड दैट्स व्हाई वी हैव द शॉपिंग मॉल्स द वे वी हैव राइट नाउ. क्रेजी राइट? लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजों को भी कैसे चेंज कर देते हैं यार. थिंक अबाउट इट. और फिलहाल सुनते हैं खासियत राघव चैतन्य और जोनिता गांधी की आवाज में चांद मेरा दिल से. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha है आपके साथ, फरहान अख्तर की आवाज में, तुम हो तो गाता है दिल, मेरा दिल भी ना आए तो बेहतर ही है क्योंकि मैं बहुत ही गंदा गाती हूँ, आपको पता है, आपने सुन ही रखा है। सो आज का लेन जैम्स का सवाल अगेन हम अल्फाबेट्स के साथ खेल रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि विच लेटर इन द अल्फाबेट्स इज एन इंसेक्ट। ये तो काफी आसान है, यूं पता चल जाएगा आपको, जानती हूं मैं तो। बताएं जरा जल्दी से 3311063 पर मैसेज करके या फिर कॉल कर दीजिए 4441063 पर, विच लेटर इन अल्फाबेट इज एन इंसेक्ट। 3311063 सेंडिंग मस्कारा फ्रॉम द मूवी, मैं वापस आऊंगा, स्टे ट्यून्ड एंड रियो विंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness, and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. बीते दिल इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी पद्मावत. रणवीर सिंह ने क्रेजी कमाल किया था इस समय भी यार. और धुरंधर तो देखो अलग लेवल पे ही पहुंच रही है, राइट. बाकी बात करते हैं लेम जेम्स की. मैंने भी कमाल कर दिया है सवाल पूछ के और आपने मुझे लाजवाब कर दिया है. जवाब देखे मतलब आई मीन स्पीचलेस, इफ दैट मेक्स सेंस. आई डोंट नो. So the question was, which letter in the alphabet is an insect? And भर भर के यहाँ मुझे जवाब आए हैं और सबने सही जवाब दिए हैं. मतलब मुझे कोई हिंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक और मौका देने की जरूरत नहीं पड़ी, सब करेक्ट है. जी हाँ. So there is Sushma, there is Dominic, there is Sami, there is Sarita, there is Harish, and there is just है उनका नाम. उनका नाम जस्ट लिखा हुआ है. या एंड देर आर सम इमोजीज, तो मुझे नाम नहीं पता है. सबने करेक्ट आंसर दिया एंड येस द करेक्ट आंसर इज बी. अब इजी हो रहा है ना आपको. यू गॉट अ हैंग ऑफ इट. आई एम गोना चेंज द क्वेश्चन टुमारो. लेट्स सी कल आता है कि नहीं. फिलहाल आप सुनिए मेड इन इंडिया इन द वॉइस ऑफ अलीशा चिनॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेमनेस. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास. Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
2: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: तनिषा सुनिधि चौहान और आनंद राज आनंद की आवाज में इश्क समंदर फ्रॉम द मूवी कांटे ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑलरेडी टॉक चल रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, हमें पता ही है वैसे कि भयंकर वाली गर्मी हो चुकी है। सो बाहर वैसे तो ना ही निकले दिन में हो सके तो, पर अगर गलती से निकलना पड़ रहा है तो बड़ा ख्याल रखें अपना, भर भर के सनस्क्रीन लगाएं, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि ये जो गर्मी है ना, ये ऐसी है कि आप दो मिनट के लिए भी बाहर निकल रहे हो तो सिर दर्द हो जाता है। और मेरे साथ ये हो रहा है लिटरली, लाइक देर इज दिस सुपर मार्केट इन फ्रंट ऑफ आर ऑफिस, अगर हम वहाँ बिल्कुल वो रोड क्रॉस करके जाना है, ज्यादा दूर भी नहीं है, उतने रोड क्रॉस करने में ही मेरे सिर की बैंड बज जाती है। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, अपना ख्याल रखें और खाना ऐसा खाएं जो लाइट हो, जिसमें ज्यादा ऑयल ना हो, सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग तो वो जैसे ही ऑर्डर आ रहा है उसी वक्त खा लें, उसे रख के लेटर ऑन खाएंगे वाला सिचुएशन ना करें। फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस इस वक्त आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर ओनली, सो प्लीज ख्याल रखें मेरी जान, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको खुश नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को, थोड़ी सी भी परेशानी ना हमें भी परेशान करती है यार। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सेंडिंग बाय द वे ऑल द वे अनुष्का मन चंदा की आवाज में आयशा मूवी से, स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास।
2: तुमसे कह देंगे हम सारी बातें, कैसे हैं

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह की आवाज में हरदम हमदम ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और लूडो मूवी से बाय द वे गाना था, और अगर आपने नहीं देखी है डू वॉच इट, इट इज ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत बढ़िया मूवी है, और पंकज त्रिपाठी है यार साथ में, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर एंड दैट क्यूटी रोहित सराफ। अमेजिंग कास्ट, डू वॉच इट अगर नहीं देखी है तो। बाकी बात करते हैं मेरी, मैं मिलूंगी आपसे कल दोपहर 2 बजे, और कल तो सेलिब्रेशन है क्योंकि वीकेंड है। यस, ऐसे ही खुशी रहती है मुझे वीकेंड की। सो कल मिलते हैं, तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और अगर हम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो फटाफट से। radioolive.qs the handle, follow us on social media, और सारी videos वगैरह चेकआउट करो, जो contest चल रहे हैं उसमें participate करो, और बस सुनते रहो Radio Olive, और जियो बिंदास मेरी जान। Radio

0: Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

नाम सिमरन के नाम पे पूरी फिल्म बन गई यार। इसमें कंगना रनौत होती है, उसमें जो सिमरन का कैरेक्टर रहता है वो मेरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है यार। हाँ जी सिमरन कौर है।

टेलीफोन है, लेकिन मेरे स्टूडियो का टेलीफोन आप एक्चुअली बजा सकते हो यार, अगर आपको बात करनी है, कुछ कहना है, शेयर करना है, 444-1063 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं यार। चीज याद रखना, कोई किसी के लिए नहीं मरता, मैं पहले बता रही हूँ यार। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन? गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है भाई साहब, हीट अलग लेवल पे चल रही है, वो हमको भी पता है कि ये चीज होती है। जून 3rd है भाई, वो रंग दिखाएगा अपने, तो आपको जो है अपना ध्यान रखना है, सनबर्न नहीं होने चाहिए, उससे रंग जो है वो अपना चेंज हो जाएगा। तो या हाइड्रेट योरसेल्फ, हम सभी लोग जो है वो आपको बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें। और बताओ, 4 घंटे अपने होने वाले हैं, अटेंशन पूरी की पूरी मुझे इधर ही दे दो, 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज दो। ये अंडररेटेड गाना है यार, ये गाना बैंड बाजा बारात में था।

0: क्या हो गया यार, आप लोग आज मुझे इमोशनल बना रहे हो यार। मेरे पास सबरिंदर जी का मैसेज आ गया था, सत श्री अकाल सिमरन जी, मैं अमरिंदर सिंह, थोड़ी आवाज बहुत सुनी है तो सुन के बहुत चंगा लगता, थैंक्स फॉर मेकिंग आवर इवनिंग सुपर्ब विद लवली प्लेलिस्ट, लव यू 100 किलो रेडियो वाले, लव यू टू 100 किलो यार। इतना ही नहीं यार, ये वॉइस नोट सुनो आप।
1: Hey Simran.
0: Hi.
1: I just want to tell you that so much life and vibrancy you bring to your show.
0: Aww.
1: The moment you come at 5 o'clock, I keep waiting to listening to you, and I can't even tell you the excitement and the breath of fresh air you bring to
0: Aww.
1: All the talks and all the topics you pick up, the impromptu way of your talking. You really, really connect to your audience.
0: Thank
1: and
0: you.
1: Keep up. Keep doing the good job, and we really look forward to listen to you every day. Thank you for doing such a great job.
0: Love you, 100 किलो शिल्पा, ये इतना अच्छा लगता है यार, like I'm crying, वो बॉलीवुड वाले खुशी के आंसू यार। आप लोग मेरा फ्यूल हो, आप लोग मेरा पेट्रोल हो यार। हवा की तो बहुत जरूरत है, लेकिन वो भी ठंडी।
2: मौसम के सुनो,
0: जो भी बाहर जा रहा हाय हाय करता हुआ अंदर आ रहा और बता रहा है बाहर के मौसम के बारे में। 43 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है, लेकिन फील्स लाइक 44 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट टेम्परेचर आज का है 45 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट है 35 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी जो है 10% है, विंड जो है 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। डार्लिंग ध्यान रखो यार। वापिस लौट रही हो यार।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: एसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: कोई काम दे रही हूँ। काम क्या करना है आपको बताती हूँ यार। आपके पैर के अंगूठे या उंगलियों पे पहले देखो, आपका पैर का अंगूठा और उंगलियां देखो, अगर उसके ऊपर आपको लग रहा है कि बाल जो हैं वो ग्रो करते हैं। वैसे सब लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि, बॉडी क्लीन रखनी चाहिए है ना, बट अगर आपके पैर के अंगूठे या उंगलियों पे हेयर आते हैं, बाल आते हैं, दैट मीन्स ये ग्रेट साइन है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम सही है। सो ऐसा मैंने पढ़ा था, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट यस मैंने पढ़ा था, तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ। मेरे तो ग्रो करते हैं, बट या वो अलग बात है कि हम सब अपने आप को क्लीन रखना पसंद करते हैं। नाउ यू चेक कि क्या आपके पैर के अंगूठे या उंगलियों पे बाल आते हैं, बताओ बताओ बताओ। सिमरन कौर आओ के साथ जबरदस्त इवनिंग्स में एक नंबर गाने।
1: ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल,
0: गोरे गोरे गाल टैन हो जाएंगे बेटा, बाहर की जो गर्मी है। सी यू बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: हाँ जी एक ना फनी बात बताती हूँ, पता नहीं आपको फनी लगती है कि नहीं लगती है, पर मुझे लगती है। ये गाना आपने सुना ना, उसमें जब गाना चल रहा होता है उसमें वो कितनी सारी लड़कियां नहीं करती है ये वो तो अपने सुर में गा रही है, मुझे ऐसा लगता है वो चिढ़ा रही होती है ये। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये गाना सुनेंगे ना तो आपको जो मैं फील कर रही हूँ ना वो आपको भी फील होगा।
1: सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
0: आप लोगों के बगैर तो चैन बिल्कुल नहीं आता है। जब तक ये चार घंटे आप लोगों के साथ स्पेंड ना कर लूं और आप लोगों के मैसेजेस ना पढ़ लूं, वॉइस नोट्स ना सुन लूं, मजा नहीं आता यार। अभी फिलहाल मजा आपको अगर शॉपिंग का है तो कतर आउटलेट एग्जीबिशन जो है वो 5 जून से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जो है वो चलने वाली है। सो इसकी फ्राइडे की टाइमिंग दोपहर 1 से लेकर रात के 12 बजे तक रहेगी, सैटरडे टू थर्सडे इसकी टाइमिंग सुबह 10 से लेकर रात के 12 बजे तक रहेगी। तो शॉपिंग जो है वो आप इंटरनेशनल ब्रांड्स जितने भी हैं वो आप जो है कर सकते हैं उनकी शॉपिंग, जिसमें प्राइसेस आपको बढ़िया वाले मिलने वाले हैं। फिर चाहे आप फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल गेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्यूटी से जुड़ा कोई भी सामान जो है वो खरीदना चाहते हैं, कतर आउटलेट एग्जीबिशन आपके लिए है। मैं भी आपको वहीं यही दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर हॉल नंबर 1 में मिलूंगी, क्योंकि मुझे भी दोस्त शॉपिंग पसंद है यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोमरान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोमरान, वन फैमिली वन मिशन, अनस्टॉपेबल.

बहुत बढ़िया खान पैनी दी आवाज देश तुसी इन्ना सोना गाना सुन रहे सी। 6:05 40 सेकंड हो गए ने स्टूडियो दी कड़ी ते दिन याद दिलाऊं आपको। यार ये एनिमल फिल्म भी कमाल की थी एंड उसके साथ साथ ये वाला गाना 90s की याद दिलाएगा। थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो फेयर हुई है। देखो नॉर्मली जो है ना वो बोला जाता है लड़कियों के लिए कि यार लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कों के पैसों के पीछे होती है दिस एंड दैट, लेकिन 10 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती है। एक स्टडी जो है उसने अब एक नई रिसर्च की है कि ये जो लड़के लोग होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा गोल्ड डिगर होते हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है या फिर मेरे को सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ आप एक ही साइड में यानी कि वो लड़कियों को ही आप नहीं बोल सकते, लड़के भी होते हैं। देखो यार आप ना मेरे को फेयर चीज बताओ, क्योंकि आपके ग्रुप में भी आपका कोई दोस्त या कोई आप कोई किसी को भी जानते होगे जो कि आपको पता है कि यार वो गोल्ड डिगर है, राइट? सिर्फ लड़कियों को ही नहीं आप बोल सकते, तो आपका क्या कहना है इस चीज के पीछे? लड़के और लड़कियां दोनों ही हो सकते हैं यार, बट आजकल जो है वो सच्चा प्यार किसी को मिल नहीं रहा है। सब लोग प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जब प्यार नहीं मिल रहा है मुझे लग रहा है कि इंसान जो है ना वो अकेला होता जा रहा है। वो मतलब उसको अकेलापन चाहिए कि यार मेरी जिंदगी में कोई आए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पैसा कमा लेता है यार, हम सब इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इंसान ढूंढता क्या है? पैसा थोड़ी है यार, प्यार वो खुद ही कमा लेता है यार पैसे। तो आपका क्या कहना है 3311063 पर? ये जो बोलते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, अब तो स्टडी कहती है कि लड़के ज्यादा गोल्ड डिगर होते हैं यार।

0: Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness, and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक
5: नंबर
3: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ऑलिव नंबर 1।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1
5: आरजे सिमरन के साथ।
8: This hour is brought to you by
9: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: ਬੱਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 6:18 ਦੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। देखो यार, अगर आपको इंटरेस्ट है कार्स में, सो आपके लिए ये एस्ट्रो वर्ल्ड वॉल्यूम 001 ऑटोमेटिव एग्जीबिशन जो है वो चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये 17th ऑफ जून तक चलने वाला है एस्ट्रो होम बेस अलविदा पार्क में, और सुबह दोपहर 2 से लेकर रात के 10 बजे तक जा सकते हैं। टिकट जो है इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी, एंड आप अपनी जो है वो क्या होता है ना, हर एक इंसान की एक पसंद होती है, सो आप व्हीकल्स को जाके देख सकते हैं वहाँ पे, उस लाउंज में जाके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ी देर में वापस लौटती हूँ क्योंकि प्रेयर का टाइम होने वाला है, तो आती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
2: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बिल्कुल ऑलिव रिमाइंड में आज जो है ये वादर हवा लगाना जो है आप सुनने वाले हैं, क्योंकि रेट्रो जो है वो हमेशा ही ऑन टॉप है यार। बस गाने जो है जब भी आप सुनते हैं तो आपको कभी कभी इसके पूरे पूरे लिरिक्स आते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ लगता कि आपको कैसे आते हैं। अभी फिलहाल के लिए कैसे आता है ये
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बिल्कुल कैसे आता है कोई याद, सिर्फ एक परफ्यूम की खुशबू बस चाहिए आपको। ऐसा होता है ना हम सबकी लाइफ में, एक परफ्यूम की खुशबू है जिसके लिए आपको वो सर्टेन परफ्यूम सूंघने की जरूरत नहीं है, वो आपके जहन में होता है और वो खुशबू आपको याद रहती है। जब आप आसपास जो है वो कोई वैसा ही परफ्यूम आप सूंघते हो ना, तो आपको वो सारी की सारी मेमोरीज जो है ना वो आप उसमें बह जाते हो, आप भूल जाते हो, और वो आपकी जिंदगी में बहुत खास इंसान होता है जिसका परफ्यूम आपके दिमाग में सेट रहता है। तो अगर आपकी लाइफ में वो इंसान है जिसका परफ्यूम आपके जहन में बसा हुआ है, भाई साहब वाट लगी है आप।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: Aha! I miss Sushant Singh Rajput यार. ये उन्हीं की फिल्म का तो गाना है. और देखो ना, ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे नए नए जो है वो चलते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं, जिसमें से एक ट्रेंड जो है वो और चल रहा है कि अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो फिर क्या होगा कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो जिसमें वो बोल रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं आप, तो उसी को कॉपी करके उनके जो है वो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दो और लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स जो है वो इससे बढ़ चुके हैं. मेरा कभी कभी मन करता है कि इस तरह की हरकतें करूँ, देखूँ ये बात कितनी सच है, लेकिन मैं अपने आप को, पता नहीं, मैं ऐसे ट्रेंड में अपने आप को ऐड कर ही नहीं पाती हूँ. क्या आप में से किसी ने इस ट्रेंड को ट्राई किया है, ये कॉपी पेस्ट वाला, फॉलोअर्स बढ़ाने वाला, तो बताइएगा मुझे. देख के तुझको दे लाइक और डोला रे, सुन रहे हो रेडियो ऑलिव पर, के तेरे जियो बिंदास बेबी, खुश रहा करो. खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके पास 70,000 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको उदास कर सकती है. सो खुश हो, सिमरन कौर का शो सुन रहे हो यार.
1: रेडियो

0: यो हनी सिंह गबर इस बैग से आप ये गाना सुन रहे हैं. गुड इवनिंग माय लव. 7:06 बिल्कुल जी 7:06 25 सेकंड स्टूडियो की कड़ी दे हो चुके हैं. अब आप भी सोच रहे होंगे
1: ये हम आ गए हैं कहां.

आपकी इवनिंग आई नो गर्मा गर्म सी चल रही है, लेकिन दैट्स ओके, आपका माइंड फ्रेश और ठंडा करने के लिए गाने जो है, म्यूजिक जो है वो आपका साथ देगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बातों से आपका मूड जो है थोड़ा सा लाइट और चिल कर सकूं। और आज का दिन है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, इसके बारे में आज आप सुन भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे। इस बार का जो थीम है वो है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। अगर मैं साइकिल की बात करूँ ना, साइकिल से हम सबकी मेमोरीज जो है वो जुड़ी हुई है। मेरी ये मेमोरी जुड़ी हुई है कि मैं धड़म करके गिरी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार गिरी। और मेरे तो एक बार का ये भी सीन है कि भाई अगर मेरे से साइकिल नहीं चल रही है, मैं बता कौन सी साइकिल चलाती हूँ जिसमें सपोर्ट लगी होती है, सपोर्ट वाले एक्स्ट्रा टायर लगे होते हैं ना, वो वाली साइकिल चलाती हूँ। तो बच्चे मुझे देख के हंसते हैं कि भाई इसको साइकिल चलानी नहीं है, नहीं आती है यार मुझे साइकिल चलानी। इनफैक्ट जो बच्चे साइकिल चला रहे हैं मेरे से वो भी नहीं होती है, मुझे सपोर्ट वाली साइकिल चाहिए, अपने से नहीं होता है। आप में से कितने लोग हैं जो कि बढ़िया तरीके से साइकिल जो है वो चला पाते हैं, या फिर आपको भी मेरी तरह वो एक्स्ट्रा टायर वाली साइकिल चाहिए क्योंकि आपको गिरने का डर है। मैं तो गिरी भी हूँ दोस्त, कोई डर नहीं है, शर्म नहीं है, पर गिरी हूँ यार।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Today, the nation beats as one to celebrate a leader of vision, wisdom, and profound dedication. We extend our warmest and most heartfelt birthday wishes to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Your Highness, your inspiring leadership continues to guide Qatar towards a future of prosperity, unity, and global distinction. May the year ahead bring you continuous good health, happiness, and success. From all of us across the nation, happy birthday, Your Highness. May Qatar always flourish under your guidance.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक. 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: जान दे दी तो बिल्लो रानी क्या करेगी अकेले अकेले अभी फिलहाल के लिए। देखो यार, जब आप लोग साथ होते हो तो मैं अपने आप को अकेला बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ, और मजेदार म्यूजिक चलता रहता है, वाइब जो है वो सेट रहती है, आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, बस उतना ही काफी है। और जी जो चीज मुझे पता होती है जिससे आपका फायदा हो सकता है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज मैं याद रखूं और आपको बताऊं जरूर, ताकि आप भी ना भूलें, और हर रोज बता दूं जब तक ये चीज चल रही है, जो कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की मैं बात कर रही हूं। इस सीजन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो बोरिंग हो चुकी है, नए डिजाइन चाहिए, जाके आप एक्सचेंज करवा सकते हैं नए डिजाइन के साथ, बस मेकिंग चार्जेस आपको पे करने हैं। और उसके साथ साथ अब आपको नहीं पता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से 15% जो है वो आप गोल्ड पर यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपने कतर में। सो मेक श्योर कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर सीन सेट करिए और जाइए।
1: अब सुनिए।

हो, ऐसे लगता है ऐसे गा रहे हैं थोड़ी देर में खांसी आ जाएगी। आई वही हूँ, अगर मैं ट्राई करूँ तो मेरी तो खांसी निकल जाएगी यार। और गले का जोर लगेगा 16 से 7 बज के 34 मिनट 25 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पर जो

0: शुक्रिया मेहरबानी करम, तो आप मुझे बोलेंगे जब मैं आपको बताऊंगी।
1: जेंजी डिकोडेड
0: ऐसे है क्या? एक स्लैंग जो है जेंजी यूज करते हैं, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का होता है कि जब आप किसी को ना बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, मतलब अनवांटेड तारीफ कर देते हो, क्रिंज वर्दी प्रेज जो है ना वो किसी को कर देते हो, सो उसको जो है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइक किसी इंसान की आप तारीफ कर रहे हैं, लाइक वो बंदा इतना तारीफ के काबिल है भी नहीं और सामने वाले को दिख रहा है, जब आप उसको ओवरहाइप कर रहे हो यार, मतलब इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए जो है वो इस वर्ड को, इस स्लैंग को यूज किया जाता है, ग्लेजिंग। ओके, सो या अगर आपको ये आदत है, अगर आप ग्लेजर हैं तो मत बनिए, क्योंकि लोगों को समझ लगता है और जिसकी आप कर रहे होते हो उसको भी समझ लगता है। सुमन कौरी आपके साथ, जियो बिंदास और ये बिल्लो रानी। गाने की वाइब यार अलग लेवल।

0: एचसीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जी मैं जी सुने होंगे दादी की हाल चाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ बिना देर लगाए चलो आप सबकी मैं नाम लेने वाली हूँ। अब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ही काम करिए, अपना नाम मुझे खुद ही बता दीजिए क्योंकि मुझे अपने आप तो आपका नाम पता लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अपना नाम लिखिए अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप करना है 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। अगर आप कतर के बाहर से मुझे सुन रहे हैं तो +974 लगाना मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। सजाद, महमूद, रवि, डेजी, रिफत, हमदा, आयत, फहीम, अल्ताफ, महमूद, किसी ने मुझे वॉइस नोट भेज दिया दोस्त, मैं कैसे वॉइस नोट आपका अभी बोलते बोलते सुनूंगी। जकरिया खान जी थैंक यू सो मच, नगेंद्रा जी थैंक यू सो मच, वसीफ जी थैंक यू सो मच, दानिश जी थैंक यू सो मच, मोहिशा जी थैंक यू सो मच, सनाया जी थैंक यू सो मच, दानिश अगेन, मोइन खान जी थैंक यू सो मच, सफदर जी थैंक यू सो मच, शिवा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नबील कुरैशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम दोस्त, अपना नाम लिखो, शम्स जी थैंक यू सो मच, शहाब जी थैंक यू सो मच, शेख जी, हेना जी, शिवा जी थैंक यू सो मच, फारा खान जी थैंक यू सो मच, हकीम अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हर्षा थैंक यू सो मच, रजनी जी थैंक यू सो मच, अयान जी थैंक यू सो मच, टीका जी थैंक यू सो मच, हिना जी थैंक यू सो मच, शेख साहब थैंक यू सो मच, आलम जी थैंक यू सो मच, हिना खान ऑलरेडी मैं आपका नाम, फैज़ जी आपका नाम मैं ऑलरेडी बोल चुकी, सुल्तान मनाजिर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रेहान जी थैंक यू सो मच, मौशमी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए, पता नहीं आप लोग मुझे वॉइस नोट क्यों भेज रहे हो, जैसे कि मैं सुन लूंगी। सना जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अबरार जी थैंक यू सो मच। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: हैरिस का भी रिमिक्स बन गया, उछल अम्बा कद. अब ये भी गाना चलेगा, वो भी गाना चलेगा, लेकिन ये वाला गाना अच्छा है यार, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है. खास बात ये है कि दोनों ही गानों में जो है वो अक्षय कुमार हैं. और अभी के लिए इस गाने में कौन है और ये गाना क्या है, ये जानने का टाइम आ चुका है.
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको एक चुटकी भर सॉन्ग जो है वो सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है ये कौन सा गाना है. ओके, मुझे पता है आपके दिमाग की घंटी बजी और दोबारा बजाते हैं, अच्छे से बताते हैं. बताओ ये कौन सा गाना है. 3311106 पर जब आप मुझे वॉइस नोट नहीं भेज रहे हैं और लिख के भेज रहे हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर रही, आपसे कट्टी हो जानी है. आपको मुझे वॉइस नोट भेजना है, गाना गा के भेजेंगे तो भी मजा आएगा, आपके सिंगिंग के कीड़े भी शांत हो जाएंगे. सो आपको रिकॉर्ड करना है, हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाना गा के भेजिए, बताइए कौन सा गाना है. 3311106 पर सिमरन गौरे आपके साथ.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: I'm the number one radio alert.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
7: ओए होए होए, ये गाना बस चांद को डेडिकेट कर दूं मैं। इतना खूबसूरत, कल तो इतना प्यारा लग रहा था ना यार। आज क्या कह रहा है चांद बताओ जरा मुझे।

0: इस गाने को बस सुनते सुनते इरफान को याद करते हैं यार, लाइक अमेजिंग, वो आंखों से बातें कहते थे यार। हम क्या पूरा सिनेमा उनको बहुत मिस करता है। उदित नारायण की आवाज में रोग फिल्म से गाना सुन रहे थे, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। सिमरन कौर है तोड़े नाल और हम खेल रहे हैं गेम
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर सॉन्ग, और आप लोगों को गेस करना था ये कौन सा गाना है।
3: ये गाना है तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे मूवी से।
0: बाबू जी करेक्ट बोले हो।
4: हेलो सिमरन जी।
0: हेलो जी,
4: दिस इज चीका ऑल द वे फ्रॉम मदीना खलीफा। द सॉन्ग इज तुझे देखा तो ये ऐसा लगा।
0: हाय हाय हाय, अपने लिरिक्स
4: फ्रॉम द मूवी DDLJ।
0: थैंक यू जी,
4: बाय, पीस आउट
0: जी।
5: हाय सिमरन।
0: हाय,
5: माय नेम इज इमाद एंड दिस सॉन्ग इज तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
0: आग ही लगा दिए यार।
6: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: थैंक यू सो मच।
7: हे सिमरन, दिस इज अब्दुल हमीद।
0: आहा,
7: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। This song is from movie Dilwale Dulhaniya Le Jayenge.
0: Okay.
7: Actor is Shahrukh Khan and actress is Kajol.
0: Mm-hmm.
7: Myself, Mr. Abdul Hamid.
0: Okay.
7: Thank you very much.
0: Thank you. Thank you so much. Kavita ki tarah aapne gana pad diya. Main bhi aise hi karti hu. Safe hota hai yaar.
8: Hi Simran.
0: Hi.
8: This is Sunita. And the song is
6: Tujhe dekha to ye jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम।
0: ओए होए होए,
6: अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
0: आए हाय हाय, काश हमारे लिए भी कोई गाता यार ऐसा गाना।
8: हे सिमरन, दिस इज सुहैर, द सॉन्ग इज फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड द सॉन्ग इज तुझे देखा तुम्हें जाना सनम,
0: ओफो,
8: प्यार होता है दीवाना सनम।
0: अमेजिंग।
8: एंड द एक्ट्रेस इज काजोल एंड एक्टर इज शाहरुख खान।
0: और आज मैसेज ऑफ द डे।
9: हेलो सिमरन आंटी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मुझे सॉन्ग्स पसंद है।
0: अच्छा, थैंक यू सो मच, और मैं आपकी फैन हूँ यार, थैंक यू। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है ये कौन सा गाना है। आप लोगों ने अपनी सिंगिंग के कीड़े भी निकाल लिए और गाना भी जो है वो बता दिया यार। ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया और आप लोगों का रिस्पांस जो है बहुत बढ़िया मिल रहा है यार, शुक्रिया। कल फिर से खेलेंगे। फिलहाल तो रात को महसूस करते हुए जितने भी प्रेमी जोड़े हैं इस गाने को सुन लीजिए, अच्छी फील आएगी।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए या

इस गाने का भी ना अपना चार्म है यार. एंड गेस व्हाट, लोग इस फिल्म के बारे में इतनी बात करते हैं, मैंने ये फिल्म देखी नहीं है. अदर डे मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी एंड इस मूवी के बारे में बात छिड़ी. आई एम लाइक आई एम क्लूलेस. ही इज लाइक ओके आई एम गोना जज यू नाउ. आई एम लाइक जज मी, आई नो मैंने ये फिल्म देखी नहीं है यार. 4, 3, 2, 1 एंड गो.

ब्यूटीफुल ट्रैक राइट जी. सिमरन कौर है तुहाडे नाल. अब सिमरन कौर की गल्टी माने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले

0: डीआर कॉकटेल 2 का ये गाना बस थोड़ी देर में सुनेंगे, उसके साथ साथ ये गाना मेरे दिल के बेहद करीब है यार। अभी मैं खोने वाली हूँ बस कुछ ही घंटे के लिए, लेकिन कल अकेली नहीं आऊंगी, साथ में वीकेंड डे के आने वाली हूँ, तो फन करेंगे मिलके। अभी अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए एंड टाइमली सो जाइएगा, डूम स्क्रॉल मत करिएगा, ओके, एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, रात को सोने से पहले बहुत सारा पानी मत कीजिएगा वरना चक्कर लगते रहेंगे आपके इधर उधर। सो खाने में ऐश कर दे रहो, चेहरे पर डबली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।
1: Radio Olive Park.

मुझे लगता है ना कि लाइफ में कभी कभार कुछ करने में अगर थोड़ी देर हो तो वो देर होती ही नहीं है। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में आपके साथ। और दिल की आवाज आपसे दिल से पूछ रही है, भाई कैसे हैं आप। वैसे दिल का हाल और अच्छा हो जाएगा जब आप भी ये जानेंगे मेरे दिल का हाल कैसे अच्छा हुआ। आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते करते करते कई बार अक्सर ऐसी रील्स टकरा जाती है जिनसे बहुत खुद ही मोटिवेशन से मिल जाती है। एक 53-54 ईयर्स समथिंग अराउंड की आंटी जी, वो पहली बार लाइफ में अपना व्लॉग ट्राई कर रही थी एंड शी वॉज वेरी नर्वस। वो कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आज दिल पूरा बाहर निकल के आ जाएगा, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। वो भी पब्लिकली, उन्होंने लोगों के बीच में सरेआम बाहर घर से बाहर निकल कर पहली बार एक व्लॉग बनाया। उसमें जैसे बताया कि बस यही कि मैं आज बाहर हूं, मैं यहां पर हूं और मेरा दिल बहुत धक-धक कर रहा है। वो भी यही बोल रही थी, थोड़ा सा घबराहट थी आवाज में, एक डर था, मतलब ऐसा लग रहा रो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया। और जब वो व्लॉग बन रहा था ना और बस एंड होने वाला था, तो लास्ट में बस उन्होंने, छोटा सा व्लॉग था अराउंड 40-50 सेकंड्स का, उन्होंने लास्ट में बस यही बोला, अब थोड़ा बेटर लग रहा है लेकिन मन अभी भी घबरा रहा है, लेकिन बन रहा है। और पता है उनके व्लॉग्स पे करीब करीब करीब करीब 32K व्यूज जा चुके थे। कैन यू बिलीव, हम सबको ना कभी सिर्फ एक स्टार्ट की जरूरत होती है। उस डर को रखते हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो स्टार्ट अच्छा जाएगा ना, वो डर भी हटता चला जाएगा। तो इसलिए कुछ अच्छा करने के लिए स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत चाहे कुछ भी कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस सफर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ दिन भर के थके हारे मूड के बाद, टॉक्सिक लोगों के बीच में से निकल के आने के बाद आसानी से नहीं होता, आसान भी नहीं होता अपना मूड चेंज करना, और किसी का मूड चेंज कर देना ये आसान भी नहीं होता। लेकिन कोशिश तो मैं ही कर सकता हूँ ना, तो करने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं अपना मूड चेंज करने के लिए? तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं लवली ट्रैक्स को, ओनली ऑन रेडियो ऑल इट जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड, अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रन। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे। फाल्कन फिटनेस बेनोम रन, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।

0: अच्छा सर सर बताइएगा, वो टाइम जब आपने अपने मम्मी पापा की शादी की वीडियोस देखी, और अगर आज आप उन्हीं वीडियोस को देखते हैं तो वो जब एनिमेशन देखते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती। पहले आती थी हाय क्या प्यारी सी वीडियो, और अब ये क्या कर रखा है ऐसे वाली। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर। तो चलिए रील्स की कुछ कहानियों में कुछ पुरानी यादें जोड़ी हैं, सुनाते हैं।
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: तो एक वक्त था जब शादी के वीडियोस दो दो घंटे के हुआ करते थे, पूरा फंक्शन, पूरी रस्में, पूरी फैमिली, सब कुछ डिटेल्स में कैप्चर हुआ करता था। और आज 60 सेकंड की रील में पूरी लव स्टोरी, एंट्री, डांस और इमोशन सब कुछ फिट होने लग गया है। पहले लोग कहते थे कि वीडियो आई क्या, और अब क्या कहते हैं, भाई रील रील का लिंक भेजना है, रील भेज, अच्छा मेरे को टैग कर देना। पर सवाल तो ये है जनाब, क्या हम मोमेंट्स जी भी रहे हैं या सिर्फ उन्हें एडिट करके पोस्ट करने में लगे रहते हैं फिल्टर समेत? क्योंकि 60 सेकंड्स में सब परफेक्ट लगता है, पर असली यादें तो उन्हीं लम्हों में होती हैं जो कैमरे के बाहर रह जाते हैं। नहीं, वो फूफा वाली लड़ाइयाँ, वो अगर कलेश ना हो जाए तो शादी अच्छी जाती ही नहीं है। नहीं, वैसे रील वाली रियल कहानी में आज मैं भी आपसे यही पूछता हूँ कि आपको क्या वो फुल 2 आवर्स वाली मेमोरीज पसंद है, या फिर वो 60 सेकंड में परफेक्ट हाईलाइट? बताइएगा मुझे जरूर। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, रिश्तेदारी गहरी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ जमाना फास्ट हो गया है पर फीलिंग्स अभी भी स्लो ही समझ आती है भाई मेरे को तो, है ना। आरोग्य जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।

भाई देखो 90s में ना थोड़ा प्यार ना फिल्मी ज्यादा हुआ करता था और हीरो ना सुन के भी हाँ समझ लेता था, और आज के टाइम में वही चीजें सीधा ब्लॉक्ड हो जाती है, नहीं रेड फ्लैग हो जाती है। हाई दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिड नाइट लाउंज में, और बारी है

फ्लैशबैक। तब इन चीजों को कहते थे ट्रू लव और आज कहते हैं रेड फ्लैग अलर्ट। तो बताओ दोस्तों, 90s की वो कौन सी मूवी है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये स्टोरी आज के टाइम में आती तो कैंसिल हो ही जाती। मतलब लोग कहते हैं यार क्या वाहियत सी मूवी है। आपकी नजर में ऐसी वो कौन सी मूवी है 90s की जो आपको लगता है कि आज के टाइम में तो बिल्कुल ना चल पाती। क्या वो ओवर पोजेसिव हीरो वाली फिल्म है कोई, या फिर अनरियलिस्टिक हैप्पी एंडिंग वाली? जल्दी से मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो कीजिए, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और देखते हैं कि जेंजी और ये 90s वालों की सोच कहाँ जाके अटकती है, क्योंकि हर जनरेशन का प्यार ना भाई अपनी अलग स्क्रिप्ट लिखता है ना। वैसे फिलहाल मेरी स्क्रिप्ट तो ये कहती है कि सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, और खुशियों को मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, गानों की धुनों के साथ। तो चलिए साथ में इंजॉय करते हैं और गुनगुना के कहते हैं जियो बिंदास।

देखो जनरेशन बदल सकती है, लोगों का प्यार करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्यार की डेफिनेशन तो नहीं बदल सकती ना। प्यार वो एहसास है जो किसी को स्पेशल फील कराता है ना। और ये स्पेशल वाली फीलिंग हर जनरेशन के साथ स्टाइल में चेंज हो सकती है, पर फीलिंग तो फीलिंग रहती है ना जनाब। हाई, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर फिल्मी फ्लैशबैक के साथ आ गया हूं मैं।

फ्लैशबैक। जी हाँ, मिडनाइट लाउंज के इस सफर में फिल्मी फ्लैशबैक में मैंने एक सवाल पूछा था कि 90s की वो कौन सी मूवी है जो आपके हिसाब से आज के टाइम में आई तो शायद ऑडियंस, वो खासकर जो जेंजी ऑडियंस है, उसे एक्सेप्ट ना करे। तो हमारे क्लिसनर्स हैं, इनका नाम है नेहा। नेहा जी लिखती है कि राजा हिंदुस्तानी 1996 की मूवी है। कुछ ऐसे नाकारू बच्चे हैं आजकल के कि ये कहती हैं कि उस टाइम ना वो इंटेंस लव और इमोशंस दिल को छू लिया करते थे, पर आज इवन मेरे बच्चे जो हैं वो भी इनको कहते हैं इतना ओवर ड्रामा और पॉजिटिवनेस मम्मी, थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लगता? अरे भाई सच भी तो है यार दोस्तों, 90s में ना बारिश में एक मतलब छोटा सा आइकॉनिक सीन बन जाता था, गाने में इंसान पूरा प्यार प्यार कर लेता था। मतलब जो लड़की अब तक नहीं मान रही थी, लेकिन वो एक गाना गाया, गाने में उनका थोड़ा बहुत सफ़र दिखा दिया, उसमें छेड़खानी करी, उसने बोला कि मान जाओ, लड़की मान गई यार, इतना इजीली कम्युनिकेशन कहाँ है यार इसमें, ख़त्म, सारे बीच के स्क्रिप्ट्स खत्म, प्रैक्टिकली जो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती वो दिखा दिया उसमें करके। नहीं तो पर एक बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन फीलिंग्स तब भी रियल थी और आज भी रियल है, नहीं बस एक्सप्रेस करने का तरीका बदल गया है ना। वैसे फिल्मी फ्लैशबैक के सफर में हम बार बार आते रहेंगे, क्योंकि वक्त के साथ ना सिर्फ मूवीज नहीं प्यार का वर्जन भी अपडेट हो जाता है। तो फिलहाल अभी मेरा शो का एक वर्जन अपडेट हो रहा है, तो कहीं जाएगा नहीं। संत रही रेडियो, ऑल एवर दिल से कहते रहिए।

0: अच्छा, कभी सोचा है कि अकेले रहना और लोनली फील करना दोनों एक जैसा लगता है पर होते बिल्कुल अलग है? बता दो। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव में, आपके दिल की आवाज आपके साथ। और डिजिटल डायरी का आज पन्ना खोला तो उसमें कुछ लिखा था,
1: डिजिटल डायरी।
0: देखो, लिखा है कि अकेले रहना एक चॉइस है जहां आप खुद के साथ कंफर्टेबल फील होते हो, अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, सेल्फ लव। पर लोनली फील करना वो तब होता है जब आप लोगों के बीच होके भी अंदर से खाली महसूस करते हो। आजकल सबके पास कॉन्टैक्ट्स हैं पर कनेक्शंस नहीं, चैट है पर बातें नहीं। शायद इसीलिए अकेला रहना बेटर है बजाय उस जगह होने की जहां आपको कोई समझता तक नहीं है। नहीं, वैसे मुझे क्या लगता है ना कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आपके पास लोग ज्यादा हो, कॉन्टैक्ट्स तो सबके फोन में 600-700 भी होते जा रहे हैं। जरूरी ये है कि जो हो वो सच में आपके पास आपका हो। नहीं तो डिजिटल डायरी की इसी तरह से मैं पन्ने पलटता रहूंगा, कुछ ऐसी बातें जो हम सबके अंदर है और रिलेटेबल है शेयर करता रहूंगा, क्योंकि कभी कभी अकेलापन नहीं गलत लोग ज्यादा दर्द देते हैं। नहीं, फिलहाल अभी कोई दर्द नहीं देगा, अभी तो खुशियां देगा। कौन? आपके दिल की आवाज में, ये आपका छोरा आरजे आकाश, दिल की आवाज। तो चला रहा हूं एक प्यारा सा गाना, एक लवली सा ट्रैक आपके लिए, तो कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल, और दिल से कहते रहिए जी।

जब कहानी पूरी भी थी और अधूरी भी, वो रिश्ता जो कभी ऑफिशियली शुरू हुआ ही नहीं पर दिल ने उसे एंड तक फील किया। नहीं, हाय दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में, और बारी है था और ना कोई लेबल, फिर भी हर बात में एक अपनापन था। मैसेजेस आते थे, कॉल्स होती थी, पर कभी हम बन ही नहीं पाए। नहीं, शायद वक्त गलत था या हिम्मत कम थी या फिर किस्मत को ये कहानी सिर्फ ऑलमोस्ट ही रखनी थी। सब कुछ था, बस एक नाम की कमी थी। सब कुछ था, बस एक नाम की कमी थी। नहीं, और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ब्रेकअप भी नहीं हुआ फिर भी दर्द पूरा फील हुआ। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं सिर्फ इतना सिखाने के लिए कि प्यार जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो, फील होना जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार जो है ना, वो कुछ कहानियां जो हैं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस ऑलमोस्ट रह जाती है, ऑलमोस्ट। फिलहाल ये ऑलमोस्ट जो वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, लेकिन अभी की सिचुएशन उतनी प्यारी है। हर गाने को महसूस करते हुए, कुछ लम्हों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को एंजॉय करते हैं। जियो बिंदास।

प्लस मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग। रेडियो ओलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: डेली टेंशंस, कल क्या क्या करना है, कल वो नहीं हुआ ये क्या होगा, वो नहीं माना बात को वो कैसे होगा, कल मैं बॉस को कैसे क्लियर करूंगा, कल अगर ये नहीं हो पाया तो कल की बहुत टेंशन लेते हैं आप, लेकिन सोने से पहले बहुत कुछ भूल जाते हैं, खुद को रिमाइंड करा।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले बस एक बात दिल में रखो कि हर दिन स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लो फील करना भी, थक जाना भी, ये बिना वजह उदास हो जाना भी कंप्लीटली नॉर्मल होता है जनाब। तुम मशीन नहीं हो दोस्त, इंसान हो, और इमोशंस होना कमजोरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। आज अगर दिन भारी था तो खुद को जज मत करो, बस ये मान लो कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, कल एक नया दिन है और तुम उसके लिए रेडी हो जाओगे। थोड़ा रेस्ट लेके, थोड़ा खुद को समझ के, समझे? मुझे पता है, मैं जब वर्कआउट करने जाता था ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद 10 मिनट की भी एक पावर नैप लूंगा ना तो उसके बाद मैं बड़ा फ्रेश फील करता था। तो शायद एक सुकून की नींद होती है जो आपको अगला चैप्टर या आंख बंद करके खोलना, यानी कि एक शटर, सीन चेंज जिसे कहते हैं, तो एक्सपेक्ट करो, मैनिफेस्ट करो कि शायद अगला सीन बहुत खूबसूरत होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कभी कभी ना हील होने के लिए स्लो होना भी जरूरी होता है। फिलहाल इस रात को जो प्यारा सा मंजर है ना, इसको मैं स्लोली स्लोली ही फील करना चाहता हूँ। तो अगला गाना जो लाइब्रेरी से निकाल रहा हूँ वो पक्का आपके दिल को छू जाएगा, है ना? तो सोने से पहले डिटॉक्स करते हैं थोड़ा सा म्यूजिक के साथ। कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल, और दिल से कहते रहिए जियो बिंदा।

0: Nights Out.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

शो स्टार्ट होने से पहले मेरी सांसें बहुत फास्ट फास्ट होती है। हाई, जल्दी मिलना है, जल्दी मिलना है, जल्दी मिलना है, आप लोगों से बातें करनी है। कौन कौन सेलिब्रिटी के आज गाने हैं जो आपको पसंद आएंगे, बड़ा एक्साइटेड होता हूँ आपका एक्सप्रेशन जानने के लिए। वैसे भी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान लाइफ में पसंद आने स्टार्ट हो जाए, जब आपको किसी की कन्फर्मेशन चाहिए पड़ जाए कि हाँ अच्छा था ये वाला, ज़्यादा अच्छा था, तो आप समझ जाओ कि आपको प्यार हो गया और हम भी आपके उस इश्क के मारे हैं जनाब। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज़। और अब फिलहाल मिडनाइट लाउंज में मेरी सांसें बहुत हल्की हो गई, हार्ट बीट जो है ना बहुत स्लो हो गई है। फिलहाल ये सफ़र यहीं तक का। आज की बातों में आपको अपनी कहानी मिली हो, अगर दिल हल्का सा फील हुआ हो तो समझ लेना ये रात सिर्फ गुजरी नहीं है, जी ली गई है जनाब, जी ली गई है। जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होती दोस्त, पर हर रात हमें एक मौका देती है खुद से थोड़ा और जुड़ने का। अब आप भी आंखों को आराम दो, दिल को सुकून दो और कल एक नए होप के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करो। मैं हूं ना बाकी आपके साथ, आपके दिल की आवाज आरजे आकाश। तब तक सुनते रहिए, बढ़िया बढ़िया गानों को एंजॉय करते रहिए और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन अब बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजा